क्या आप फिटनेस में बहुत आगे हैं? हाँ, आपके आगे पीछे फिटनेस में कोई अड़ता नहीं, और आप डेढ़ डेढ़ दो दो ढाई ढाई तीन तीन घंटा जिम में रहते हैं, या वॉक पे जाते हैं, या रन करते हैं, या साइकिलिंग करते हैं, तो आप ना एक वीडियो बनाइए, मेरे कहने पर बनाइए, हो सकता है वो वीडियो आपकी नेक्स्ट वायरल लिस्ट में ऐड हो जाए। सो हेलो हाय, मैं आज नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ, एंड द पॉइंट इज कि सोशल मीडिया पे जो बॉलीवुड सेलेब्स एक ट्रेंड बना देते हैं, ट्रेंड को फॉलो कर लेते हैं, और अगर हम उस पर वीडियो बना देते हैं ना, तो हम भी उनकी कैटेगरी में कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं। एंड द पॉइंट इज कि शिल्पा शेट्टी उनमें से एक है जो फिटनेस दिखाने से पीछे नहीं हटती है। उन्होंने रिसेंटली डंबल के ऊपर हल्का सा, आप कह सकते हैं, अपना कोर पार्ट जो है ना, उसमें थोड़ा सेट करके प्रॉपर क्रंचेस करके दिखाए हैं। हां जी, मतलब आप कह सकते हो वी सेट होल्ड परफॉर्मेंस था उनका। आप देखोगे उनके प्रोफाइल में जाके तो आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, कोर एक्सरसाइज इस तरह से करना, अपनी बॉडी को बैलेंस रखना, ये थोड़ा सा मुश्किल है। पर उन्होंने किया है। अगर आपने कर लिया तो भाई आप किसी से कम नहीं है। तो आपके भी एब्स, आपका भी पोस्चर, आपका भी बैलेंस, आपका भी बॉडी कंट्रोल दिख जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा अपने रिस्क पर, और आरजे नुपुर अपने यानी मेरे रिस्क पर बढ़िया वाली गाने चला रही है मस्ती मॉर्निंग शो पर।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
1: नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर,
2: नुपुर,
0: कितना वक्त हो गया है ना कि शीशे के सामने खड़े होकर हमने ये गाना नहीं गाया है, सजना है मुझे सजना के लिए। तो देखो ऐसी चीजें ऐसे मौके तभी आएंगे जब आप नई ज्वेलरी लेकर आएंगे और बजट की चिंता किए बिना। हाँ जी, सरानगुन रोड पर पहुंचिए वर्ल्ड्स फेमस ज्वेलर, दैट इज जोया लुकास, जहां पे बिगेस्ट ज्वेलरी सेल चल रही है। फ्लैट 40% ऑफ मिल रहा है आपको मेकिंग चार्जेस पर। तो मम्मी की चॉइस की, वाइफ की चॉइस की या खुद के चॉइस की, आप गोल्ड डायमंड पोल की या प्रेशियस ज्वेलरी ले लो। ये ऑफर सिर्फ 14 जून तक एप्लीकेबल है। सरानगुन रोड वर्ल्ड्स फेमस ज्वेलर जोया लुकास पहुंचिए। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है, डोंट गो एनीवेयर।

0: और सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
3: कभी आपने ऐसा सुना है कि अपने बर्थडे पर किसी ने केक काटा नहीं है, बल्कि केक को सूंघ कर उसकी जो फ्रेग्रेंस आई है ना, उससे अपना पेट भरा है। आए हाय, आए हाय, आए हाय, इतना डिसिप्लिन हेल्दी खाने को लेकर कौन हो सकता है? बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में कौन है ऐसा? सोचिए सोचिए सोचिए। अरे आप नहीं समझ पाएंगे, मैं हिंट दूं आपको। उनका एक डायलॉग बहुत ही फेमस है, एंड दैट इज, छोटी बच्ची हो क्या? एंड डेफिनेटली ही इज नन अनदर देन टाइगर श्रॉफ। हाँ जी, उनकी सिस्टर ने रिसेंटली बताया है, कृष्णा ने, कि उनके भाई इतने ज्यादा अपनी फिटनेस को लेकर फ्रीक है, इतने ज्यादा कंसिस्टेंट है कि वो अपने बर्थडे पर भी स्वीट्स नहीं खाते हैं। वो उस लेवल की फिटनेस इंजॉय कर रहे हैं एंड अपने केक को हल्का सा सूंघ लेते हैं, अपना पेट भर लेते हैं। बाबा रे बाबा, इतना तो से नहीं हो सकता। डेफिनेटली आपकी नजर में भी कोई ऐसा इंसान हो तो जरूर बताना, क्या आप इस लेवल के फिटनेस चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सकते हो? इसका जवाब भी जरा ऐप पर कमेंट करके बताना। आज ये नंबर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है, डोंट गो एनीवेयर मेरी जान।
4: पत्थर है वो मुझे रोक

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाजी, क्या बात जी?
1: Order today from GG Mart, your personal grocer. 40% off, 40% joy Alukas.
2: 40% off? Oh my God! Let's go, let's go!
3: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Joya Lucas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joya Lucas, the world's favorite jeweler.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टकाटक जोश में
2: कुछ लोग होते हैं ना जो नॉर्मल काम नहीं करना चाहते, वो उड़ते तीर लेकर काम करना चाहते हैं, मतलब कॉन्ट्रोवर्सीज का हिस्सा बनना चाहते हैं, और वो ऐसा करते करते खुद भी एक कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हैं। सो हेलो हाय, मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एंड याद तो होगा आपको सलमान खान का वो सालों साल वाला केस जिसमें उन्होंने काले हिरण का शिकार कर लिया था। हाँ, तो मैं आपको बताना चाहूंगी उसी केस के ऊपर मूवी बनाने की तैयारी कर ली है डायरेक्टर भारत एस श्रीनाथे ने। एंड यू नो व्हाट, उन्होंने इसका पोस्टर वगैरह भी रिलीज करवा दिया। एंड बाय द टाइम ये चीजें सलमान खान की आंखों पर जब आई तो उन्होंने नोटिस जारी करा दिया है। हाँ जी, पहले तो ये मूवी बनाने का उन्हें कोई अप्रूवल नहीं है, और अगर वो मतलब वो कहते हैं ना लीगल चीजों से बचना चाहते हैं तो उन्हें सलमान खान से माफी मांगनी पड़ेगी। अरे बाबा रे बाबा, तो ये जो केस है सलमान खान की पास पहुंचते ही और ज्यादा कंट्रोवर्शियल बन चुका है। आज ऊपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है, हर तरह की बातें आप तक पहुंचाने के लिए डेफिनेटली कुछ गाने भी आपको सुनाऊंगी, सो डोंट गो एनीवेयर, उसके बाद करते हैं बातचीत।

0: फ्लाइट टिकट खरीदे, दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: For show timings, check out the Radio Masti app now.

आप स्मार्ट तो है लेकिन वक्त पर स्मार्टनेस का फायदा नहीं उठाया, तो किस बात के स्मार्ट है आप? आज पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ की द लायन सिटी चैलेंज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट? इन सारी कैटेगरीज में इंटरेस्ट रखने वालों को मिल सकता है आने वाले वक्त में बहुत सारे कैश प्राइजेस एंड गिफ्ट्स। सो पार्टिसिपेट कीजिए, टाइप कीजिए लायन LION और भेज दीजिए 9151893 पे टेक्स्ट या व्हाट्सएप करके, एंड डेफिनेटली हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और आगे के स्टेप्स आपको बताए जाएंगे। हाँ, अरे आप स्मार्ट है यार, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। आरजे यूनुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर।

0: Singapore, prepare for impact.
1: 3, 2, 1.
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
4: हाँ जी जी,
3: आधा kg मसूर दाल,
4: जी जी,
3: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
4: जी जी,
3: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
4: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
3: क्या
4: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप.
3: वाजी, क्या बात जी.
4: Order today from GG Mart, your personal grocer.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टका टक जोश में रहो।
0: इमेजिन वो लोग जो सबसे ज्यादा बदनाम है कि भाई इनका काम ठीक नहीं है यार, ये किसी की सुनते नहीं है, पर एक तरफ वो विकी कौशल और कैटरीना कैफ की तो बहुत सुन रहे हैं। मतलब डिपेंड इस पर भी करता है कि आप उनको समझाते कैसे हैं, उनके साथ डील कैसे करते हैं। हाँ, सो हेलो हाय, मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। जैसे ही मौका मिलता है लोग पेपराजी फोटोग्राफर्स को खरी खोटी सुना देते हैं, मतलब कोई मौका नहीं छोड़ते हैं ये बोलने में कि पेपराजी फोटोग्राफर्स को रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है कि क्या फोटोज डालनी चाहिए, क्या वीडियोस डालनी चाहिए। लेकिन रिसेंटली विकी कौशल एंड कैटरीना कैफ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अपने बच्चे के साथ जब एयरपोर्ट पे पहुंचे तो सारे फोटोग्राफर्स ने अपने जो कैमरे हैं वो साइड में कर दिए और पर्सनली उनके बच्चे से वो मिले, हाँ जी, जिसका नाम है बेबी वीहान। और उन्होंने नो फोटो पॉलिसी को सीरियसली कंसीडर भी किया। तो मतलब ठीक है, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, सारे काम होते जाते हैं। व्हाट यू से आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। टून गो एनीवेयर, मेरी जान, आती हूँ मैं जस्ट इन अ शॉर्ट वाइल।

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
3: भाई कुछ रेस्टोरेंट आपको सिर्फ खाना नहीं सर्व करते हैं, आपको यादें सर्व करते हैं। और पिछले 25 सालों से ये यादें आप नॉर्थ इंडियन कुजीन में एंजॉय कर रहे हैं, मतलब दादी नानी के टाइम वाली जो बेस्ट रेसिपीज के टेस्ट रहे हैं ना, वो आप इनके यहाँ एंजॉय करते हैं। मुझसे पूछेंगे तो आई हैड पानी पूरी, हाँ जी गोलगप्पे इनके मैंने खाए थे, और सेकेंड नंबर पे भिंडी की सब्जी, वो मेरी फेवरेट थी यार। फेवरेट है मतलब, यस आई एम टॉकिंग अबाउट शाही महारानी रेस्टोरेंट, जो कि रैफल सिटी सेंटर में आपका इंतजार कर रहा है 25 ईयर्स ऑफ लेगेसी को सेलिब्रेट करते हुए। और इस एनिवर्सरी के मौके पर आपको बहुत सारी डिशेस सिर्फ और सिर्फ $25 में मिल रही हैं, वो चाहे तंदूरी चिकन हो, फिश अमृतसरी करी हो, पालक पनीर हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये जो ऑफर है वो सिर्फ 30 जून तक ही वैलिड है, एंड अगर आपकी टेबल का बिल मिनिमम $100 हुआ तो आप बहुत सारी डिशेस $25 में अनलॉक कर सकते हैं। तो ये है 25th एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन रैफल सिटी सेंटर में बने शाही महारानी रेस्टोरेंट के साथ। आज नुपुर मसी मॉर्निंग शो पर आपके साथ, डोंट गो एनीवेयर।

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
3: कुछ बातें इतनी बुरी लगती हैं, इतनी बुरी लगती हैं कि सालों साल वो याद रह जाती हैं। हाँ, एनीवेज मैं आज मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ, एंड द पॉइंट इज कि बुरी लगने के साथ साथ हम उन्हें ऐसा दिल से लगा लेते हैं कि वो शख्स हमें नजर आता है ना, तो ऐसा लगता है कि बस उसको खरी खोटी सुना दो यार। सो मैं आज मस्ती मॉर्निंग शो पर आपको बताना चाहेगी कि इम्तियाज अली की 2007 में एक मूवी आई थी जब वी मेट, जिसमें बॉबी देओल जो है वो शाहिद कपूर की तरह नजर आने वाले थे, एंड करीना कपूर की डिमांड में वो जिन्हें रियल लाइफ में डेट कर रही थी शाहिद कपूर को, तो शाहिद कपूर को इस मूवी के लिए रिक्रूट कर लिया गया और रातों रात बॉबी देओल को इस मूवी से हटा दिया गया। ये बात इनको आज भी हर्ट करती है, बहुत ज्यादा हर्ट करती है, और इसका कन्फेशन बॉबी देओल ने खुद किया है। एक कन्फेशन और कर लेती हूँ जाते जाते कि भाई अगर आप सिंगापुर के वन ऑफ द स्मार्टेस्ट, वो कहते हैं ना अपने ज्ञान से भरे हुए शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आ चुका है मस्ती मीडिया नेटवर्क का द लायन सिटी चैलेंज। इस चैलेंज में आपका दिमाग जीतने वाला है, आपकी नॉलेज जीतने वाली है। तो जनरल नॉलेज में आप इंटरेस्ट तो अपने कॉलेज टाइम से रखते हैं, करंट अफेयर्स, ओहो एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, क्या कुछ आप नहीं जानते हैं। सो व्हाई नॉट, मैं आरजे नुपुर आपको बता रही है कि आपको पार्टिसिपेट करना है लायन सिटी चैलेंज में, जो कि मस्ती मीडिया नेटवर्क आपके लिए लेकर आए हैं। इस शो में पार्टिसिपेट करने के लिए आप सिंपली हमें टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप कीजिए, जिसमें टाइप करके भेजना है आपको लायन, नंबर है हमारा 9151 8963। ऑन दिस नोट मी आरजे नुपुर साइनिंग ऑफ।

0: नाचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए ड्यूटी पर।
0: Non-stop music, non-stop musty, only on Musty Music Cafe.
2: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
3: Check it out.
4: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: चाहिए आप बोलो हम बनाएंगे, चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट आपकी मस्ती, व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
3: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट। 40% off, 40% joy alukas,
4: 40% off, oh my god, let's go.
2: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Joy alukas laya hai the biggest jewelry sale, flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry, and 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joy Alukas, the world's favorite jeweler.

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: Are you ready?
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 91518963.
0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
3: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
4: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Musty Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual-focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Musty 24/7. Email a brief intro to info@radiomusty.com.sg requesting for an application form.
5: Good morning! अर्जुन आएंगे?
0: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। ये यादें, हाय यादें, यादें।

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंग आउट।

0: की बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हाय सिंगापुर, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, वेरी वार्म वेलकम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। द शो इज मस्ती हैंग आउट, मैं हूँ मुग्धा आपके साथ एंड द शो हैज बिगन। क्यों ना शो की शुरुआत एक सवाल से की जाए, क्योंकि अब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे आते आते वक्त में पता लगेगा। ये बताइए आपका दिन कैसा रहा, इस सवाल के लिए तो ऑप्शंस भी नहीं चाहिए। चलो मैं दे देती हूँ, बिजी, प्रोडक्टिव, हेक्टिक, थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल, है ना। देखो क्या ना, हम सब की जो डेली लाइफ है ना, रूटीन, उसमें हम इतने ज्यादा उलझ जाते हैं कि कभी कभी खुद के साथ ना जरा सा भी वक्त बिताने का हमें समय नहीं मिलता। जितना भी अभी तक का दिन बीता है, कैसा बीता है, मैं तो बस ये पूछना चाह रही थी। अच्छा, बहुत अच्छा, अरे वाह, अब और अच्छा भी देगा, टेंशन मत लो। वैसे आज क्या है, आज है 10th of June। आइए इस दिन को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। मैं हूं मुग्धा, वंस अगेन उन सभी का बहुत बहुत वेलकम जिन्होंने अभी अभी शो को ज्वाइन किया है लाइव सिंगापुर से सीधा आपके कानों तक। अगले कुछ घंटे जो है ना, हम साथ रहेंगे, ऑल द गुड वाइब्स, ऑल द एंगेजिंग कॉन्वर्सेशंस और एंटरटेनमेंट तो बात ही छोड़ दो। बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां होंगी, ट्रेंडिंग टॉपिक्स होंगे, वो बातें जो आपको कितनी रिलेटेबल लगेंगी आप खुद नहीं जानते, और कुछ ऐसी जो आपको सोचने पर मजबूर

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकैज़म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ओके सिंगापुर, हम जब भी फ्यूचर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? एआई, रोबोट, स्मार्ट टेक्नोलॉजी एंड दिस दैट जू जू जू जू जू। वेलकम बैक, मैं हूँ मुग्धा आपके साथ। क्या है ना, कभी कभी फ्यूचर का सोल्यूशन पास्ट में छुपा होता है। जी, सिंगापुर में टेम्परेचर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। वी ऑल नो, कभी शार, कभी थंडर, कभी टेम्परेचर, बट द बेसिक पॉइंट इज कि टेम्परेचर हर जगह है, सिंगापुर में भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और इस चैलेंज से ना निपटने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया जो है वो सामने आया है। सिटी प्लानर्स और जो रिसर्चर्स हैं फिर से विंडो शटर्स पर फोकस कर रहे हैं। यस, ये एक ट्रेडिशनल शटर है जो कि 19th century के बिल्डिंग्स में बहुत ही आम हुआ करते थे, लेकिन हम लोग उनसे वाकिफ नहीं है, परिचित नहीं है। सो द आइडिया इज वेरी सिंपल। आइडिया है कि एयर कंडीशनर से ना रूम ठंडा होता है, लेकिन उससे रूम ठंडा करने के बजाय पहले ही धूप और हीट को बिल्डिंग के अंदर आने से रोक दिया जाए। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? रिसर्चर्स जो है, एंड इनफैक्ट रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि प्रॉपरली डिजाइंड एक्सटर्नल शटर्स और शेड्स इंडोर टेम्परेचर्स को ना कम रखने में बहुत मदद कर सकते हैं और एनर्जी कंजप्शन वो भी रिड्यूस कर सकते हैं। सो मुझे ये खबर जो है वाकई बहुत मजेदार लगी। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि हर नई प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूरी नहीं कि टेक्नोलॉजी हो, हमें बस थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि पहले के जमाने में भी तो लोग जिंदा ही रहते थे गर्मी में, बिना एसी के चल ही रहा था ना जीवन। अब क्यों इतना मुश्किल बना दिया है? खैर, उसी मुश्किल को आसान करने के लिए सबने जी जान लगा दिए। कभी कभी प्रोग्रेस का मतलब ना सिर्फ आगे बढ़ना और टेक्नोलॉजी के पीछे भागना नहीं होता है, मुड़ कर देखना भी होता है। और उन आइडियाज को दोबारा इस्तेमाल करने का वक्त आता है, बिल्कुल आ चुका है, इनफैक्ट आ चुका है, जो हम वक्त के साथ भूल गए थे।
1: What, झुमका?

सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। सिंगापुर, इमेजिन दिस, स्टूडियो की ब्राइट लाइट्स, सामने एक होस्ट, दिल की धड़कनें तेज और एक सवाल जो आपको जीत के और करीब लेकर जा सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप एक रियल गेम शो का हिस्सा बन सकते हैं? जी, मस्ती मीडिया नेटवर्क प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज, सिंगापुर का वेरी स्मार्ट गेम शो, जहां पे जीत होती है नॉलेज की। दिस इज नॉट एनी ऑर्डिनरी क्विज शो, यस, ये एक प्रॉपर गेम शो है, पूरा गेम शो एक्सपीरियंस है, लाइक कौन बनेगा करोड़पति, हाय, जहां पे ना आपका जनरल नॉलेज, आपका करंट अफेयर के प्रति आपका विश्वास और आपकी अट्रैक्शन, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, इन सब का नॉलेज स्पॉटलाइट में होगा। और सबसे एक्साइटिंग बात, शो स्टूडियो में प्रॉपर शूट किया जाएगा और बाद में ब्रॉडकास्ट होगा। जी, सो गिविंग इट अ चांस टू कम्पीट लाइक अ ट्रू गेम शो कंटेस्टेंट विद ऑल द एक्साइटिंग कैश प्राइजेस एंड ऑल द विनिंग्स एंड एवरीथिंग, है ना। सो पार्टिसिपेट करना पड़ेगा इन सब के लिए, वो जान लो, वो बहुत जरूरी है। बहुत ही आसान है, आपको टेक्स्ट करना है LION ऑन द नंबर 9151 8963, चिर परिचित नंबर है, है ना, 9151 8963। आपको लिखना है LION, लाइन बना के नहीं भेजेगा, लिख के भेजेगा। उसके बाद ना हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, क्वालिफिकेशन राउंड की डिटेल्स आपको भेजेगी, दो सवाल आपको दिए जाएंगे और उन दो सवालों का जवाब देने के लिए एक विंडो होगी, नॉट अ लिटरल विंडो, दो दिन का टाइम विंडो मतलब, और उसके बाद वो विंडो बंद हो जाएगी, आपको इन्हीं विंडो खुलने के दौरान दरमियान जवाब देना होगा। सो बेसिकली आगे आगे क्या क्या करना है हमारी टीम आपको गाइड करती जाएगी, लेकिन इन सब के लिए द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू टेक इज 9151 8963 पर रजिस्टर करना होगा LION लिख करके। Now you know कि this is not just a game show जिसको आप ऐसे करके जाने देंगे, you know this is like very exciting, तो spotlight आपका इंतजार कर रही है, don't just watch a game show, be a part of it, LION को text कर दीजिए 9151 8963 पर, the Lion City Challenge, Singapore's smartest game show, where knowledge wins।

0: hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: सिंगापुर बोर्ड हो गेम खेलनी है चैलेंज एक्सेप्ट करोगे एक्साइटेड
3: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
4: अच्छा सुनो जरा ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा
5: हाँ जी जी
4: आधा केजी मसूर दाल
5: जी जी
4: काजू किशमिश ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं
5: जी जी
4: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो
5: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर
4: क्या
5: जी जी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर जस्ट लॉग ऑन टू जी जी मार्ट ऑनलाइन .com ग्रोसरी एड टू कार्ट करो चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोर स्टेप
4: वाजी क्या बात जी
5: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर

0: कोई।
1: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकैज़म मिलेगा। Only on मस्ती Hangout with RJ Mugdha, Radio Masti 24/7 Live. Radio Masti 24/7 Live. Hi everyone, welcome back. I know. मैं हमेशा बहुत अच्छी बातें लेके आती हूँ, फिर से लेकर आई हूँ। कभी कभी ना एक खबर ऐसी होती है जो सिर्फ आपको नंबर्स के बारे में नहीं बताती है, अप्रिसिएशन करने के लिए होती है। और आज की जो खबर है उन लोगों के लिए है जिन्होंने सिंगापुर के अर्ली ईयर्स को अपनी मेहनत और अपने डेडिकेशन से शेप अप किया है। सरकार ने अनाउंस किया है कि पायनियर जनरेशन जो है सीनियर्स को इस साल जुलाई में मेडिसेव टॉप अप्स मिलेंगे। एलिजिबल सीनियर्स के जो CPF मेडिसेव अकाउंट्स है उनमें $300 से लेके $1200 ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएंगे डिपेंडिंग ऑन देयर ईयर ऑफ बर्थ। सबसे सीनियर पायनियर्स यानी 1934 या उससे भी पहले जो लोग जन्मे हैं उनको सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, जबकि जो यंग पायनियर्स हैं उनको भी एनुअल टॉपअप दिया जाएगा। सो कोई अछूता नहीं है, कोई बचेगा नहीं, कोई रहेगा नहीं, कोई छूटेगा नहीं। ये फंड्स आपके मेडिसिन, आपके मेडिकल प्रीमियम्स, आपके हेल्थ केयर इंश्योरेंस प्लान्स, मेडिकल एक्सपेंसेस, इन सब के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड यू नो व्हाट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस होल कॉन्सेप्ट एंड इनिशिएटिव, आज हम सब ना सिंगापुर की एफिशिएंसी और हेल्थ केयर और हर सिस्टम और क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो उसके पीछे एक जनरेशन की सालों की मेहनत है। दीज आर द पायनियर जनरेशन पीपल। सो दिस इज नॉट जस्ट अ लेबल, ये थैंक यू कहने का सबसे ब्यूटीफुल तरीका है। आपके पास भी मौका है किसी को थैंक यू बोलना हो तो मतलब अपने तरीके से थैंक यू जरूर बोलो। दिस इज अ वेरी गुड न्यूज़ आई मस्ट से, है ना? स्माइल आई ना फेस पे, मेरे तो पढ़ के आ गई थी।

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा, ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हेलो, वेलकम बैक। भाई क्या बात है, हम तो सीधा फर्स्ट आर से निकल के दूसरे आर में एंटर भी हो गए। वाओ वाओ, क्या है। सो दिस इज द एंटरटेनमेंट आर, बॉलीवुड। बॉलीवुड में ना हमने हिटमैन तो बहुत देखे हैं, हिटमैन तो वाकई बहुत देखे, पर हिट वुमन, और वो भी एक ऐसी कहानी जो पूरी स्टोरी का सेंटर वो हिट वुमन ही हो। सो बेसिकली हुमा कुरैशी की जो अपकमिंग फिल्म है बेबी डू डाई डू का जो टीजर है वो रिलीज हो चुका है, और इसने लोगों का अटेंशन काफी क्विकली ग्रैब कर लिया है। पहले तो इसका जो टाइटल है ना वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, हुमा नजर आएंगी बेबी कर मर कर के रोल में। सो इट्स लाइक कर मर कर, सो कर डू डाई डू, बेबी डू डाई डू, क्या बात है। इसमें ना मेकर्स इंडिया की फर्स्ट देसी हिट वुमन इस फिल्म को कह रहे हैं, इंडिया की कहा जा रहा है। टीजर का स्टाइल भी बहुत अलग है, मिस्ट्री, डार्क ह्यूमर, थ्रिलर एलिमेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग मिक्स है। मुझे लगता है कि बहुत नॉट एक्चुअली स्लोली कहा जाएगा, बट स्लोली एंड स्टेडीली बॉलीवुड इज इवॉल्विंग काफी तरीकों से, काफी चीजों में। एक और बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, बॉलीवुड में फीमेल असैसिंस या किलर्स जो है ना उन पे बेस फिल्में बहुत कम बनी है, इसीलिए ऑडियंस नेचुरली बहुत क्यूरियस है ये बेबी कर मर कर के बारे में जानने के लिए कि आखिर ये हीरो हैं कि विलन हैं, और सम लाइक ग्रे शेड कहानी यही तो है, तो सब बता देंगे तो क्या फायदा। फिल्म 3 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, ये है बेस्ट पार्ट। लेकिन टीजर देखकर एक बात तो पक्की है, ये कैरेक्टर सिंपल तो बिल्कुल नहीं है।
2: ओ गुजरिया, ओ गुजरिया, ओ गुजरिया है, क्या क्या है, क्या इरादा तेरा, ओ गुजरिया।
1: This is me, मुग्धा। बिल्कुल मेरी जलेबी की तरह टेढ़ी है ये हुमा, बेबी कर मर कर।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर,
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद RJ मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हाय हाय सिंगापुर, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनके स्नैक ड्रॉर में ना हमेशा कुछ ना कुछ मंचिंग के लिए मंच करने के लिए रखा होता है या रखा होना चाहिए, सो दिस इज फॉर यू। जीजी मार्ट से आई है बहुत ही टेस्टी और हेल्दी अपडेट। जी, एक कमाल का कलेक्शन है भाई वहां पे। जीजी मार्ट में अवेलेबल है कृषिवल की प्रीमियम रेंज ऑफ ड्राई फ्रूट एंड हेल्दी स्नैक्स, क्रंची मैकेडेमिया नट्स, रोस्टेड एंड सॉल्टेड पिस्टैचियोस, हेजल नट्स, पम्पकिन सीड्स, प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आलमंड्स, मखानास, किशमिश, असॉर्टेड नट पैक, मतलब परफेक्ट है आपके ऑफिस ब्रेक के लिए। मेरे लिए जिसको हमेशा कचर कचर कचर करने की आदत है, चाहे इवनिंग चाय पे आप चाय इसीलिए पीते हैं क्योंकि आप कुछ खाना होता है, लेकिन गिल्ट फ्री स्नैकिंग चाहिए, दिस इज फॉर यू। और पता है कृषिवल की सबसे खास बात क्या है? फार्म फ्रेश प्रोडक्ट्स हैं, 100% ऑर्गेनिक गुडनेस, इको फ्रेंडली पैकेजिंग, मतलब टेस्ट भी है एंड क्वालिटी भी, और पैकेजिंग इतनी कमाल की है कि मतलब मैं क्या ही बताऊं। क्योंकि कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, पर ये जो दिखता है वो एक्चुअली बहुत टेस्टी भी है, और इतना टेस्टी क्यूट दिखता है कि आप इसको ले ही लोगे। अगर आपको ट्रेडिशनल इंडियन फ्लेवर्स पसंद है तो जीजी मार्ट पर अवेलेबल पता है क्या? गुलकंद, फ्रेश रोज पेटल्स और नेचुरल शुगर से बना हुआ। इट्स एक्चुअली आयुर्वेदिक फेवरेट, बॉडी को ना नेचुरली कूल रखता है, और सिंगापुर में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। आपके डाइजेशन को सपोर्ट करेगा, समर डेज में आपको रिफ्रेश करने के लिए गुलकंद इज द बेस्ट। एंड दिस गुलकंद आपकी मिठाई लवर्स अगर आप हैं, आपके लिए जामुन ट्रायंगल्स हैं, क्रिस्पी आउटर लेयर होती है इनकी, सेंटर में ये एकदम सॉफ्ट होते हैं और जामुन का फ्लेवर होता है। मुझे तो जामुन का नाम लेते बंदर और मगरमच्छ की कहानी याद आ जाती है। खैर, सो बेसिकली हेल्दी स्नैकिंग चाहिए, ट्रेडिशनल भी चाहिए एंड मीठा भी करना है मुंह आपको, सबको जीजी मार्ट पर है, ggmartonline.com। यहाँ पे आना तो कहीं नहीं जाना, क्या बात है, वाह, राइटर हो गई अपन तो।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकैज़म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: सिंगापुर एक कैरेक्टर है ना, जो कि ना तो सुपर हीरो है और ना ही कोई विजार्ड है, ना कोई किंग है, बस एक लाल कैप पहना हुआ प्लम्बर है, राइट? और फिर वो क्या करता है, दुनिया भर के लोग जो है उससे लगभग 40 सालों से प्यार करते आ रहे हैं। व्हाई? क्योंकि उसका अचीवमेंट है। अब ये जो अचीवमेंट है, इसने एक और अचीवमेंट अपने नाम करी है। दिस इज मारियो। मारियो ने एक और अचीवमेंट अपने नाम की है, और वो क्या है पता है? द सुपर मारियो गैलेक्सी मूवी ऑफिशियली 2026 की पहली फिल्म है जिसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे $1 बिलियन का माइलस्टोन क्रॉस किया है। फिल्म सिर्फ थिएटर्स में रिलीज हुई थी, लेकिन फैमिलीज और गेमर्स इनके दिलों में ऐसी जगह बनाई इसने कि लगा नहीं था इतनी पसंद की जाएगी। पर पता है मुझे इस खबर का सबसे स्वीट पार्ट क्या लगता है? आज के बच्चे ना मारियो को स्क्रीन पर देख रहे हैं और इतने खुश हो रहे हैं, जबकि हमने एज पेरेंट्स तो उसको गेम में उछलते कूदते नाच दौड़ते देखा है। वाह, हम तो खेला करते थे, ये उसे एंजॉय कर रहे हैं। बहुत कम कैरेक्टर्स होते हैं जो कि जनरेशंस को कनेक्ट कर पाते हैं, एंड आई थिंक दिस इज व्हाई मारियो सिर्फ एक गेम का कैरेक्टर नहीं रह गया है, वो उन रेयर मेमोरीज में से एक बन गया है जो कि बचपन से लेकर के अर्ल तक साथ में साथ चल रही है, हाथ में हाथ डाल के चल रही है, तो कहानी आगे बढ़ते जा रही है। एक नन्ना छोटा प्लम्बर एक $1 बिलियन रिमाइंडर है कि कभी कभी ना सबसे सिंपल कैरेक्टर्स ही सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं।

0: 40% off. 40% joy alukas.
1: 40% off. Oh my god. Let's go. Let's go.
2: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Joya Lucas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joya Lucas, the world's favorite jeweler.
3: सिंगापुर बोर्ड हो गेम खेलनी है चैलेंज एक्सेप्ट करोगे एक्साइटेड
0: मस्टी मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
4: अच्छा सुनो जरा ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा
5: हाँ जी जी
4: आधा केजी मसूर दाल
5: जी जी
4: काजू किशमिश ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं
5: जी जी
4: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो
5: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर
4: क्या
5: जी जी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर जस्ट लॉग ऑन टू जी जी मार्ट ऑनलाइन डॉट कॉम ग्रोसरी एड टू कार्ट करो चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोर स्टेप
4: वाजी क्या बात जी
5: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर

सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। सिंगापुर कभी कभी एक नाम पूरी कहानी बदल देता है। अब देखिए, बॉलीवुड की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है। सनी देओल और प्रीति जिंटा की मच अवेटेड मूवी है लाहौर 1947, उसका टाइटल बदल दिया गया बटवारा 1947, अप्रोप्रिएट टाइटल। फिल्म वही है, कहानी सेम है, लेकिन क्या नाम उसका जो है चेंज हो गया है, आइडेंटिटी को एक नए डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू दीज रिपोर्ट्स, मेकर्स चाहते हैं कि फोकस सिर्फ एक जगह पे नहीं हो बल्कि उस पूरे हिस्टोरिकल चैप्टर पे हो, उससे जुड़े इमोशन से होता है। अभी तो मैंने कहा अप्रोप्रिएट टाइटल है, यही तो होना चाहिए था। व्हाई वर वी रोमिंग हियर एंड देयर, क्यों जाना है किसी और जगह। खैर छोड़ो, अब ये बात ना सिर्फ फिल्मों पे अप्लाई नहीं होती है, रियल लाइफ में कई बार ना एक सही शब्द, एक सही जवाब या एक सही डिसीजन आपकी पूरी पिक्चर बदल देता है। हाउ? इसीलिए आपको लगता है ना कि अगर आपकी नॉलेज जो डिटेलिंग है और जो बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं आपको याद रहते हैं, सिचुएशंस आपको पता रहती हैं, तो सवाल रेडी अगर आप हैं, दिस इज फॉर यू। बहुत ही कमाल का चैलेंज है, मस्ती मीडिया नेटवर्क प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज, सिंगापुर का स्मार्टेस्ट गेम शो जहां पे नॉलेज विंस। आपको रजिस्टर करना है सबसे पहले खुद को, उसके लिए आपको 9151893 पर एक सवाल नहीं लिखना है, 9151893 पर LION लाइन लिखकर भेजना है। पार्टिसिपेट करने का तरीका वेरी सिंपल, इसके बाद हमारी जो टीम है ना वो आपसे खुद ही कांटेक्ट कर लेगी, आगे क्या क्या करना है वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताएगी। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहला स्टेप है रजिस्टर, रजिस्टर, रजिस्टर। कैसे करेंगे? LION लिखिए, 9151893 पर भेज दीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक सवाल के चार ऑप्शंस होते हैं और उनमें से एक सही होता है, उसको हम बाद में बदलते नहीं है। टाइटल्स का तो क्या है, बदलते रहते हैं, ये जो बताया है ये नहीं बदलेगा। जल्दी करिए द लायन सिटी चैलेंज, सिंगापुर स्मार्ट गेम शो वेयर

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हाय, वेलकम बैक। एक सवाल पूछूं? सवालों का दौर है भाई हमारे लाइन सिटी में। अगर आपने सही सवालों के सही सही जवाब, मतलब सवालों के सही सही जवाब दिए तो काफी कुछ इंटरेस्टिंग आपके साथ हो सकता है। पर फिलहाल सवाल यहाँ पे है कि आपको अपनी लाइफ का कोई ऐसा रेस्टोरेंट याद है जहाँ पे आप सिर्फ खाने के लिए नहीं गए हो बल्कि टू बिल्ड मेमोरीज, या मेमोरीज आपको वहां लेकर के गई हो, शायद किसी बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, किसी एनिवर्सरी डिनर के लिए, या फिर एक फैमिली के साथ एवं संडे लंच अगर आपको याद आ रहा हो तो। कुछ जगहें ना सिर्फ रेस्टोरेंट्स नहीं होती हैं, वो हमारी पर्सनल स्टोरीज का हिस्सा होती हैं, बन जाती हैं। और जब कोई रेस्टोरेंट 25 साल तक लोगों के दिलों में अपनी जगह बना के रखता है तो समझ लीजिए कि वहां पे सिर्फ फूड नहीं, वहां पे ट्रस्ट सर्व किया जा रहा है। तो इसी खुशी में शाही महारानिया ट्रैवल सिटी सेंटर जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है 25 ईयर्स ऑफ रॉयल फ्लेवर्स। पिछले 25 सालों में हजारों गेस्ट ने यहाँ पे सेलिब्रेशंस अपनी ऑर्गेनाइज करी हैं, फैमिली गैदरिंग्स, बर्थडे पार्टीज, एंड ऑथेंटिक नॉर्थ इंडियन जो फ्लेवर है ना, अमेजिंग है भाई साहब। एंड स्पेशल माइलस्टोन को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने अपने कुछ बहुत जो बिलव्ड सिग्नेचर डिशेस हैं उनको अपने एनिवर्सरी प्राइस पे इंट्रोड्यूस किया है। चिकन टिक्का, तंदूरी चिकन, चिकन मक्खन वाला एंड मेनी मोर डिशेस जस्ट एट 25+ डॉलर्स। एक शर्त है कि अगर आप अपनी फैमिली या अपने फ्रेंड्स और जिसके भी साथ जाते हैं, आपके टेबल का मिनिमम बिल 100 डॉलर्स होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है, मिनिमम 100 से 100 ऊपर तक जाए, तो आपको ये सिग्नेचर डिशेस 25 डॉलर्स में ही मिलेंगी। बाकी देखो क्या है ना कि 25 साल बाद भी एक रेस्टोरेंट तक लोग अगर खींचे चले जा रहे हैं तो मतलब ये आपके दिलों में बस चुका है। मुझे लगता है सेलिब्रेशन की सबसे खूबसूरत बात प्राइस पे नहीं आती है, वो ये है कि 25 साल बाद भी एक रेस्टोरेंट लोगों को एक ही टेबल पर बिठाकर बातें करने, हंसने, यादें बनाने का मौका दे रहा है। तो अगर आप किसी खास डिनर का प्लान कर रहे हैं, दिस इज इट। यस, शाही महारानी, 25 ईयर्स ऑफ रॉयल फ्लेवर्स एट ट्रैवल सिटी। क्योंकि कुछ फ्लेवर्स ना सिर्फ टेस्ट बड्स तक नहीं होते, सीधा इधर दिल तक पहुंच जाते हैं।

0: Singapore, prepared for impact.
1: 3, 2, 1.
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
4: मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
5: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
6: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Musti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Musti 24/7. Email a brief intro to info@radiomusti.com.sg requesting for an application form.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकैज़म मिलेगा ओनली ऑन मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: कभी कभी जिंदगी का सबसे महंगा लेसन ना बिल के साथ नहीं आता है, किसी इंसान के साथ आता है। जी एक वायरल स्टोरी है, सबने देख ली होगी, नहीं देखी तो देख लेना। एक लड़का 3 साल तक रिलेशनशिप में था, गर्लफ्रेंड के बर्थडे पर उसने उसको ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए का एक गेमिंग पीसी गिफ्ट किया। एंड देन जू बर्थडे के अगले दिन गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप कर लिया। बाद में उसे पता लगा कि वो काफी टाइम से ना रिलेशनशिप खत्म ही करना चाह रही थी, लेकिन बर्थडे गिफ्ट मिलते मतलब वो एक्चुअली उसका इंतजार ही कर रही थी कि गिफ्ट दो, रिश्ता खत्म। सच कहूं स्टोरी इट्स नॉट जस्ट अबाउट द गिफ्ट, मुझे बुरा लग रहा है उस लड़के के लिए। स्टोरी एक्सपेक्टेशंस की है यार, हम सब कभी ना किसी न किसी रिलेशनशिप में, दोस्ती में, जिंदगी में या किसी भी फेज में ऐसा मान लेते हैं कि अगर हमने दिल से कुछ किया है, किसी को कुछ दिया है, तो सामने वाला कुछ ऐसा सोचेगा हमारे लिए बहुत ही अमेजिंग, बेहतर। लेकिन जिंदगी का ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है, आप किसी का बिहेवियर कंट्रोल नहीं कर सकते, बस अपनी नीयत कंट्रोल कर सकते हैं। एंड दिस इज द रीजन कभी लॉस पैसों का होता नहीं है, लॉस उस इमेज का हो जाता है जो हमने किसी के बारे में बना के रखी थी। लेकिन एक अच्छी बात पता है क्या, हर एक्सपीरियंस ना हमको कुछ सिखा के जाता है, स्मार्ट बना के जाता है। अब बेचारे के पैसे तो चले गए 3 लाख रुपए, गर्लफ्रेंड भी चली गई, एंड आई एम फीलिंग सो बैड फॉर द बॉय। अब मुझे पता है लड़कियां कॉमेंट सेक्शन में आके काफी कुछ कहना शुरू कर देती हैं, अगर ये कोई इंस्टा की रील होती तो अभी तक मैं ट्रोल हो चुकी होती। देन दिस इज नॉट द वे टू ब्रेक यार, ब्रेकअप करने का तरीका ये नहीं होता है। इसको कितना भी जस्टिफाई करो यू कैन नॉट जस्टिफाई दिस।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकैज़म मिलेगा ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हाय सिंगापुर, हैव यू एवर नोटिस्ड खुशी की वैल्यू हमेशा उसकी प्राइस से डिसाइड नहीं होती है। कभी कभी एक मैसेज आपका मूड अच्छा कर देती है, कभी कॉम्प्लीमेंट पूरा दिन बना देता है ना, और कभी एक छोटी सी चॉकलेट भी ना किसी के चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल आती है। सो रिसेंटली दिस बेंगलुरु सिटी इन इंडिया, वहाँ की एक स्टोरी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। एक प्रोफेसर ने क्लास खत्म होने के बाद ना अपने स्टूडेंट्स को चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट की। गो एंड फाइंड अ प्रोफेसर लाइक दिस यार। और स्टूडेंट्स उस सिंपल जेस्चर से इतने खुश हुए कि वीडियो ने इंटरनेट पर दिलों के दिल जीत लिए यार। लोग कमेंट्स में अपने फेवरेट टीचर्स और उनकी यादों का जिक्र कर रहे हैं और कुछ कह रहे हैं गो एंड फाइंड प्रोफेसर लाइक दिस फॉर यू। अगर आपका प्रोफेसर ऐसा नहीं है तो प्रोफेसर होना ही बेकार है। शायद इसीलिए कहते हैं कि लोग हमेशा ये याद नहीं रखते कि आपने उनके लिए कितना खर्च किया, लेकिन ये जरूर याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस करवाया था। इसीलिए कुछ गिफ्ट्स ना वक्त के साथ पुराने नहीं होते। सो यादों का हिस्सा बनाने के लिए देयर समथिंग लाइक एक ब्रेसलेट है किसी को स्पेशल ओकेजन पे आपको मिला, एक डायमंड का पेंडेंट जो किसी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए, या फिर एक गोल्ड नेकलेस जो जनरेशन से जनरेशन तक कहानियां लेके चल रहा है। और अगर आप भी किसी खास इंसान के लिए कुछ ऐसा चुनना चाहते हैं जो कि सिर्फ एक गिफ्ट नहीं है बल्कि एक मेमोरी है, तो जॉया लुकास लेकर आया है द बिगेस्ट ज्वेलरी सेल, गोल्ड डायमंड पोल की प्रेशियस ज्वेलरी। इन सब पे 40% ऑफ है ऑन द मेकिंग चार्जेस, कैन यू बिलीव दिस, एंड साथ ही साथ 100% वैल्यू ऑन डायमंड एक्सचेंज विद इजी पेमेंट प्लान्स, सब अवेलेबल है। ऑफर वैलिड है 14 जून तक, अब ज्यादा दिन बचे नहीं है। सो क्या है ना, कुछ जेस्चर्स चॉकलेट्स की तरह एक पल की खुशी देते हैं और कुछ गिफ्ट्स जिंदगी भर की याद बन जाते हैं। आपके पास मौका है, जिंदगी भर की याद बनाइए, जॉया लुकास जाइए और यादें बनाइए।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।
2: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकैज़म मिलेगा, ओनली ऑन मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
3: और दोस्तों इसी के साथ आज का मस्ती हैंगआउट यहीं रैप अप करते हैं। उम्मीद है आज का जो दिन होगा वो थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी मुस्कुराहट और कुछ ऐसी बातों के साथ मैं आपके साथ शेयर कर पाई होंगी जो आपके साथ आपके घर तक जाएंगी या आपके साथ रह जाएंगी कुछ वक्त तक, आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएंगी। रेडियो की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? कभी कभी एक आवाज हजारों लोगों तक पहुंच जाती है और वो आपके चेहरे पर स्माइल, आपकी आंखों में आंसू, दिल में इमोशन कुछ भी ला सकती है, और कभी कभी वही आवाज आदत बन जाती है। यस, लेकिन हर आरजे की कहानी एक लिसनर से शुरू होती है। शायद इस वक्त हमें सुनने वालों में कोई ऐसा हो जो माइक के पीछे बैठकर यहां आने का सपना देख रहा हो अपने रेडियो सेट्स पर, जिसे बोलना पसंद हो, लोगों से कनेक्ट करना पसंद हो, जिसने कभी सोचा हो काश एक दिन मेरी आवाज रेडियो पर सुनाई देती, तो शायद ये मौका आपके लिए है। यस, मस्ती मीडिया नेटवर्क के आरजे अकेडमी में एडमिशन ओपन है। हाइब्रिड लर्निंग मॉडल के साथ साथ बिगिनर से एडवांस लेवल तक की आपको ट्रेनिंग दी जाती है, इनफैक्ट दी जाएगी। प्रोग्राम जो है वो 14 साल और उससे ऊपर के पार्टिसिपेंट्स के लिए ओपन है एंड सिलेक्टेड ट्रेनिंग जो होंगे रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर उनको शो होस्ट करने का मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी। आप यहाँ पर बैठ सकते हैं माइक के इस तरफ जहां पर मैं हूँ, कितना मजा आएगा ना। यस, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन भेज दीजिए info@radiomasti.com.sg पर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको अपना इंट्रो लिखकर भेजना है info@radiomasti.com.sg पर और एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वेस्ट आपको भेजी जाएगी। कौन जाने आप रेडियो सुन रहे हैं और कल किसी शाम इस माइक के इस तरफ आप हैं और लोग आपको सुन रहे हैं। मैं भी सुन रही हूँ, अंतरा सुन रही है, रेणुका सुन रही है और बहुत सारे आरजे सुन रहे हैं। अरे आप तो वही हैं जो हमारे पास आए थे, ऐसे है ना, हमें भी बड़ी खुशी होगी। मैं हूं मुग्धा, बहुत बहुत शुक्रिया आपने इतना वक्त मुझे दिया, मेरे साथ इतना वक्त शेयर किया। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, अपनों का ख्याल रखिए और याद रखिए हर नया दिन एक नई कहानी लेकर आता है। बाय सिंगापुर, मिलेंगे अगले शो में, टिल देन टेक केयर, मस्ती में रहिए।

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: या
1: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
2: ना करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे। Not all music is loud. Some songs just sneak in. What makes you smile? Hum along and feel good. Welcome to Masti Unplugged, your indie acoustic playground on Radio Masti 24/7.
3: Purush nahi. Mahapurush hai. Mahapurush.
2: वेंसडे को मूड डाउन हो गया? कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।

0: आदाब, सत श्री अकाल, गेम जय सिंगापुर, सारू जय।
1: नो नो टॉकिंग अलाउड, सिर्फ म्यूजिक बोलेगा। बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे,
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: 1, 2, 3, 4. Do take an hour off the world. Let unplugged melodies soothe your soul and spark your imagination. Masti Unplugged, the indie hour of pure musical bliss.
2: Only on Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore.
3: Check it out.
0: सुबह की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ. क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश. योर डेली स्कूप ऑफ व्हाट्स हॉट, व्हाट्स वायरल एंड व्हाट्स वर्थ नोइंग, सर्व्ड फ्रेश विद ग्रेट म्यूजिक एंड माय अनबीटेबल चार्म. यू सी, ट्यून इन टू मी ऑन मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर.
4: अर्जुन आएंगे
0: न? करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेस आएंगे. पर हाँ, तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे. मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे.

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें,
1: आई लव यू रसना,
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Musty 24/7 Live.
2: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats

0: ये गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट.

0: Kumar, let's take a selfie now.
1: ना करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे
2: कैफे कैफे सिंगापुर प्रिपेयर फॉर इंपैक्ट
3: 3 2 1
4: मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
5: Don't stop the music, Rebo, sing it!
1: नाचने का मन है मेरा भी आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर मस्ती वॉइस आपकी चॉइस
6: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: साहब, सत श्री अकाल, गेम जय सिंगापुर, सारू जय।
1: नो नो टॉकिंग अलाउड, सिर्फ म्यूजिक बोलेगा। बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: गाना चाहिए आप बोलो हम बनाएंगे, चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट आपकी मस्ती, व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
3: चेक इट आउट।
4: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
5: ना करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे।

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे। अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो एक केजी आटा,
2: हाँ जी जी,
1: आधा केजी मसूर दाल,
2: जी जी,
1: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
2: जी जी।
1: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
2: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
1: क्या जी?
2: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
1: वाजी, क्या बात जी।
2: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: थैंक यू टू शाही महारानी फॉर द स्पेशल ट्रीट।
4: थैंक यू टू शाही महारानी फॉर मेकिंग दिस मदर्स डे मोर स्पेशल।
5: थैंक यू शाही महारानी फॉर कंफर्टिंग एंड माउथ वाटरिंग फ्लेवर्स।
4: थैंक यू,
6: थैंक यू,
5: थैंक यू,
3: थैंक यू, वी लव यू।
1: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature Wet and Non-Veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply.

0: सस्याकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back. आपकी नॉलेज आपकी जीत.
1: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: ये रात तो अपनी है, पर एक ख्याल किसका है?
3: तुमको लेकर
2: ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है?
4: मुझे चांद पहले चलो,
2: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है. बन के रात के हम सफर हर रोज 11 बजे. ट्यून इन टू
5: रात अकेली है.
6: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे. मस्ती म्यूजिक कैफे.

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज ओपन, फ्रेशली ब्रूड बीट।

0: आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज कर चेंज कर चेंज.
1: I am so in the zone. Oh, hum dum suniye re. मतलब गाना ऐसा शुरुआत करो कि आपको घुसते ही लगे कि यो बेबी आज तुम मतलब बहुत ही शानदार टाइम स्पेंड करेंगे यहाँ पर हम सभी. 5:00 हो चुके हैं, 5 मिनट. गुड इवनिंग, नमस्ते, वेलकम. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतरा यहाँ पर आपके साथ बिल्कुल पहुंच चुकी है मेरे दोस्त. और बताओ कैसा चल रहा है. मिड वीक पहुंच चुके हैं, दैट इज राइट. इट्स 10th of June, इट्स अ वेंसडे. और भी ज्यादा खुशी का मौका ये होता है कि मतलब हमारा थर्सडे तो थर्सडे मानते ही नहीं है, है ना, क्योंकि वो हमारा जो है, ऑफ कोर्स मैं 90s वाला शो लेकर कराती हूँ, तो वो उसको एसर से वहां से निकल के जाता है. एंड वी आर ऑलरेडी लाइक प्री फ्राइडे वाली वाइब ही इतनी अमेजिंग होती है. आई थिंक अब वो वेंसडे में ही आने लगी है. आई फील द प्री फ्राइडे वाइब्स फ्रॉम वेंसडे इटसेल्फ, है ना. मैंने बहुत पहले ये कहा था कि धीरे धीरे करके ये प्री फ्राइडे वाली वाइब्स ना हम लोग खींचते खींचते एक दिन आएगा कि मंडे में घुसते ही बात करेंगे कि यार आज तो प्री फ्राइडे वाली वाइब्स आ रही है. जिस दिन ये हो गया लेडीज एंड जेंटलमैन, उस दिन तो मेरे को अपना माइलस्टोन अचीवमेंट और अपने रिज्यूमे में भी ये लिख के दे देना चाहिए जस्ट इन केस कभी मौका लग जाए यूज करने का. बट वेल, द डे हैज बीन क्वाइट क्वाइट theoretically nice, let me put it that way. That was mine. You tell me yours. कई सारे लोग जो हैं already जो है before my show even started, they start sending me hi and hello, and I feel so nice. ऐसा लगता है कि कोई मेरा इंतजार कर रहा था आने का. हाय, ठीक है, ये सारी बातें तो चलती रहेंगी. भाई बहुत कुछ चल रहा है मार्केट में, बहुत ही ज्यादा कुछ, ठीक है. सबके मतलब हम सब नापेंगे, 370 रुपए की बिरयानी की भी बात करके ही रहेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली वी हैव टू टॉक अबाउट इट. अपार्ट फ्रॉम दैट सो मेनी थिंग्स हैव बीन हैपनिंग, सो लेट्स डू दैट. अभी हमारे पास 3 घंटे हैं, 5 से 8 हमारी डेट रहेगी पक्की पक्की. फिलहाल के लिए चलते हैं एक म्यूजिकल रोड की तरफ, स्टार्टिंग ऑफ विद परिणीति चोपड़ा की आवाज. मेरी प्यारी बिंदु से कमिंग अप नेक्स्ट इज अ ब्यूटिफुल सूदिंग सा गाना दिस इवनिंग, जहां पे शुरू हो चुका है मिड वीक ब्लूज. ब्लूज, नो ब्लूज.

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: Thank you to Shahi Maharani for the special treat.
2: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
3: Thank you, Shahi Maharani, for comforting and mouth-watering flavors.
2: Thank you.
4: Thank you.
3: Thank you.
1: Thank you. We love you.
5: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature Wet and Non-Veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply.
6: Singapore, bored ho, game khelni hai. Challenge accept karoge. Excited.
7: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
8: Take a break, laugh a little, and vibe a lot, because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Now, mood change kare.
9: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर. जी हाँ, मैं हूँ अंतरा आपके साथ यहाँ पर. एंड चल रहा है मेरे वीक ब्लूज. 5:00 हो चुके हैं, 17 मिनट. ब्लूज बहुत सारे लोगों की जिंदगी में जो है आ गए हैं भाई. जहाँ पे होते हैं कॉन्सर्ट्स, वहां पे आ जाता है स्कैम. और वो करने के लिए तो लोग ऐसे, मुझे लगता है, बेकरार बैठे होते हैं कि ओ अच्छा, इसका जो है टिकटिंग प्रोसेस शुरू होने वाला है. कोई नहीं, हम कुछ प्लान कर लेते हैं. नाउ I kid you not, what I'm going to tell you. Now you know that वो एक दिन था, iconic दिन था, जिस दिन मैंने आपको बताया था. And trust me, you guys were the first one जिनको मैंने news break किया था that I won the ticketing, BTS concert का ticketing war I won. And it was a bloodbath. मेरे को ऐसी achievement मिली ना, because within seconds, like एक तो आप queue में घुस जाते हो, ठीक है, आपका number आता है कुछ 50,000 something. And then you wait and you wait and you wait. Then once you get inside, it is like, भाई सेकेंड से, एक एक सेकेंड में सीटें आपके आंखों के सामने से निकल जा रही है. कभी आपका ब्राउजर हैंग कर जा रहा है. एंड ऑल्सो बहुत शिद्दत, बहुत मेहनत के बाद आई वॉज एबल टू ग्रैब वन. एंड दैट वॉज लाइक मिशन इम्पॉसिबल टाइप में घुस गई थी. बट दैट वॉज नॉट द एंड ऑफ द, देयर वर सो मेनी पीपल हु वर ट्राइंग टू गेट होल्ड ऑफ BTS के टिकट कॉन्सर्ट के, जो कि डिसंबर में होने वाला है. और चार वो शोज करने वाले हैं. At this point of time, there is like everything is sold out. But there are people who bought it and they were reselling it. People have also bought from them. Bhai, kuch meko hi mere paas hai kahi sare logo. So BTS fandom is called ARMY. लॉट ऑफ आर्मी मेंबर्स. इट्स हमारा कर्तव्य है एक दूसरे को अपडेटेड रखना. दैट्स द काइंड ऑफ फैंडम इट इज. एंड भाई $2,000 सिंगापुर डॉलर की टिकटें रीसेल हो रही थी. एंड पीपल आर देयर आउट देयर टू बाय. एंड यू विल नॉट बिलीव दैट इन जस्ट डेज आफ्टर सेल्स बिगैन फॉर दिस BTS कॉन्सर्ट, इट वॉज सोल्ड आउट June 5th को ही. लॉसेस रिलेटेड टू BTS के टिकट स्कैम्स, दे हैव सोल्ड ओवर $68,200. That is right. इतना मतलब, और अभी तक चला जा रहा है. जबकि मतलब काफी सारे चीजें जो है सिंगापुर गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व इंपैक्ट हो चुकी है. उन्होंने स्कैम अलर्ट्स भी जारी कर रखे थे. बट इट इज व्हाट इट इज, यही वो दुनिया है. आप समझ रहे हो कि जब मैंने वो टिकट पाया था अपनी मेहनत से, तो मुझे ऐसा क्यों अचीवमेंट वाली फीलिंग आई थी. These are the days we are living in, and there are a lot of things which are happening around us. कितना सतर्क रहे इंसान, सतर्क ही रहे इंसान, तो बाकी सब हम कब करेंगे? ये सवाल मैं अक्सर अपने आप से पूछती रहती हूँ. Good evening.

0: hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever-buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: 40% off, 40% joy, Lucas.
3: 40% off? Oh my God! Let's go, let's go!
4: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge.
5: Soon, soon, baba, soon, soon, baba, soon, soon, soon.
4: Joya Lucas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joya Lucas, the world's favorite jeweler.
6: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
7: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं।
8: द RJ Academy at Musty Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Musty 24/7. Email a brief intro to info@radiomusty.com.sg requesting for application form.
9: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
10: बाजू
11: ट्रैफिक अपडेट।
12: इट्स 5:31 बाय द स्टूडियो क्लॉक, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। पहले सीधा जाएंगे सिंगापुर की सड़कों पर, जानते हैं क्या है ट्रैफिक का अपडेट। हैवी ट्रैफिक आपको मिलेगा इस वक्त ऑन KJE टुवर्ड्स PKE एट चुआचुकांग वे एग्जिट। एक एक्सीडेंट की खबर ऑन PIE टुवर्ड्स, अगर आप जा रहे हैं चांगी आफ्टर KPE अवॉइड करें लेन्स 2 और 3। और व्हीकल ब्रेकडाउन आपको मिलेगा ऑन PIE टुवर्ड्स चांगी एट माउंट प्लेजेंट रोड का एंट्रेंस। सो वेल, ये था ट्रैफिक का अपडेट। दूसरा अपडेट ये है कि भाई द लायन सिटी चैलेंज के लिए धड़ाधड़ सब के जो है लायन वाले टेक्स्ट आते हुए जा रहे हैं। कुछ लोग तो सेकंड फेज तक भी बिल्कुल पहुंच चुके हैं। अगर आपने अभी तक ना सुना है ना सोचा है, तो फिर मैं हूं ना, मैं बताऊंगी आपको कि करना क्या है। ये जरा गाना सुनिए, फिर तसल्ली से बैठ के आपको बताया जाए कि भाई अगर आपको पसंद है कि आपकी नॉलेज जो है वो काफी अप टू डेट है, और आपको लगता है कि भाई दिस इज द टाइम एंड यू नो दिस इज द मौका वेर आई कैन शो ऑफ माई नॉलेज, दैट इज येस, ये तो है क्योंकि हम तो स्मार्ट है ही। लेकिन उसी के साथ साथ अगर वो शो ऑफ करते हुए हम कुछ पैसे कमा ले या फिर हम कोई प्राइजेस जीत ले बड़े बड़े, तो फिर बात ही बन जाए, है ना, आया ना इंटरेस्ट, इसीलिए वो मैंने ऐसे कहा। लेट मी कम बैक एंड टेल यू अबाउट द लायन सिटी चैलेंज ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज कर चेंज कर चेंज.
1: चलिए सवाल का जवाब दीजिए मुझे. हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? आपको जवाब पता है जरा भेजना 9158963. देखिए कितना सही है आपका जनरल नॉलेज. एकदम ही मतलब लेटेस्ट वाला है. एंड आई नो दैट यू नो, सो या जस्ट लेट मी नो कि अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है और इस तरह के सवालों के जवाब देने आपको पसंद है, देन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर फिलहाल ये जो शो है इसका नाम है मिड वीक ब्लूज. मैं अंशा आपके साथ. भाई मस्ती मीडिया नेटवर्क जो है हर बार कुछ एक नया लेकर आता है, समथिंग चैलेंजिंग, समथिंग which is unique, something which has not been done. And जब भी हम कुछ करते हैं पूरे शानो शौकत और स्टाइल के साथ होता है, तो छोटा तो वो हो ही नहीं सकता. Yes, I am talking about Lion City, a challenge. Now, this is a challenge where सिर्फ और सिर्फ नॉलेज की जीत होती है. इट्स सिंगापुर स्मार्टेस्ट गेम शो. तो अगर आपको भी लगता है कि आपकी जी के एंड योर नॉलेज अबाउट करंट अफेयर्स, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल या फिर वट एवर इज हैपनिंग अराउंड यू, यू लव टू स्टे अपडेटेड ऑन द गो, राइट? एंड यूजली यू आर द वन हु हैव दीज डिस्कशंस एंड यू नो थिंग्स एंड यू साउंड ऑल्सो सो वेल, राइट? भाई अगर आपको लगता है यू हैव इट इन यू, देन आपको बिल्कुल पार्टिसिपेट करना चाहिए द लायन सिटी चैलेंजेस में, क्योंकि ना ही सिर्फ एक्साइटिंग प्राइजेस हैं एंड देयर आर लॉट ऑफ विनिंग्स व्हिच इज अप फॉर ग्रैब्स. लेकिन उसी के साथ साथ जो है ये भी है कि भाई बहुत ही कमाल का ये शो होने वाला है, जो कि पूरा शूट होगा एकदम गेम शो के जैसे जो है अक्रॉस द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है उसको आप कि जो ये शानो शौकत है उस पे और चार चांद लगा देने वाला है. सो वेल, अ लॉट ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड, वी हैव गॉट एंड दे हैव आल्सो मूव्ड ऑन टू द स्टेज टू. इफ यू हैव नॉट डन दैट, देन टू पार्टिसिपेट फॉर फेज वन ऑल यू हैव टू डू इज टेक्स्ट अस लायन LION एंड 9158963 पर लिखकर भेज दीजिए. वंस यू डू दैट, देन ऑफकोर्स आपके पास जो है टीम का मैसेज आएगा, दो सवाल पूछे जाएंगे टू क्रॉस दैट लेवल वन. एंड देन लेवल टू के लिए क्या करना है वो आपको उसके बाद बताया जाएगा, आपको टीम डायरेक्ट कर देगी, गाइड कर देगी उसके बाद. बट वेल, दिस इज द मौका और ये मौका आपके हाथ से बिल्कुल नहीं जाने देना चाहिए. तो अभी के अभी पिक अप दैट फोन है ना एंड टेक्स्ट अस 9158963 पर LION, द लायन सिटी चैलेंज.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज करें.
1: अब कौन सिखाएगा इनको बाउंड्रीज बताओ. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर गुड इवनिंग, नमस्ते. 6:05 हो चुके हैं यहाँ पर एंड मैं वेलकम कर रही हूँ आपको मिडवीक ब्लूज पे. हमारा शो 5 बजे से शुरू हो चुका है. अगर आपने अभी अभी ट्यून इन किया है तो बहुत अच्छा वक्त है. बिल्कुल हम यहाँ पर वो उस बात की बात करने वाले हैं जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, एटलीस्ट इंडिया में. तो एवरीबडी इंटरनेट पे एंड सोशल मीडिया पे एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट द 370 वाली बिरयानी. इफ यू हैव एब्सोल्युटली नो कॉन्टेक्स्ट अबाउट इट सो लेट मी गिव यू क्विक रीकैप. एक कॉमेडी शो एंड कॉमेडी शो पे जो है हमारे कॉमेडियन जो है प्रणीत पोरे, ही इज डूइंग दिस लाइव ऑडियंस इंटरेक्शन. हर कॉमेडियन करता है, एक इंटरेक्शन होता है, इट्स पार्ट ऑफ देयर गिग. ओके, अब उधर ही ये बंदा जो है ये अपनी कहानी बता रहा है कि 370 रुपए की ये डेट पे गया. डेट पे जो है एंड ही वाज विद दिस गर्ल हु वाज फ्यू इयर्स एल्डर टू हिम एंड ये 23 साल का बंदी थी, 28 साल की. एंड इसने जाके उसको बिरयानी खिलाई 370 रुपए की, विच ही वाज टेलिंग वेरी प्राउडली. एंड देन ही वाज लाइक उसके पेमेंट भी मैंने किया. फिर उसके बाद तो मैंने सोचा कि इसने लड़की ने इसको बोला कि मुझे घर तक ड्रॉप कर दो. एंड ही वाज लाइक कि अब तो 370 रुपए की बिरयानी मैंने खर्च की है, तुम्हें खिलाई है तो वसूलूंगा तो मैं पूरा ही. And yeah, so यहां से पूरी की पूरी बात शुरू हुई because this particular clip was posted on social media. And then the outrage happened that how, like the audacity of this guy to say something like that, ऐसे यू नो खुले आम में. दैट इज वन पार्ट, ठीक है. और ये इस बंदे के पूरे कॉन्वर्सेशन, देयर वॉज दिस होल मोनोलॉग. वो तो बाद में धीरे धीरे करके सब रिलीज हो रहा है. सो ये पूरा एक छोटा सा हिस्सा था. इसने और भी बहुत सारा कुछ गंद मचाया, बहुत सारा कुछ ऐसी चीजें कही है, मतलब आई डोंट इवन वांट टू टॉक अबाउट इट क्योंकि मुझे उसमें अपनी एनर्जी नहीं लगानी है. बट दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट. इसने तो जो बैकलैश फेस किया ही किया, बट जो प्रणीत मोरे जिन्होंने ये लाइव इंटरेक्शन किया, ही रिस्पॉन्डेड. हिज रिस्पॉन्स टू दिस वॉज पीक गुरुग्राम कॉन्टेंट करके. एंड every single man in that area was laughing out loud on this joke, including the comedian himself. And that gave away a lot of thing which is not right about this whole thing and the society we are in. Yeah, it's just not right. I felt, matlab, gussa to aaya hi aaya, but mazedar baat ye hai, to be noted, ki ये पूरा चीज रिकॉर्ड हुआ होगा एंड एडिटिंग टेबल पर जाकर दे कुड हैव इजीली टेकन अ कॉल कि भाई ये तो बहुत ही ज्यादा ये अच्छी बात नहीं करी है इन्होंने एंड दिस विल नॉट रिफ्लेक्ट गुड ऑन अस. सो ये वाला तो नहीं ही पोस्ट करेंगे. दे मेड श्योर दैट दे टुक आउट दैट बिट एंड दे पोस्टेड दैट ऑनलाइन, क्योंकि समय रैना के साथ ये हो चुका है ना. रणवीर अलाहाबादिया के साथ ये हो चुका है, इनका बहुत नाम हुआ, वो वायरल हो गए, FIR वगैरह. वैसे उनके केस में FIR दर्ज हुई, इनके केस में कुछ भी नहीं हुआ. जिस बंदे ने ये जोक क्रैक किया था अपेरेंटली, तो उसकी नौकरी जरूर चली गई क्योंकि उसके कंपनी के CEO जो है उसने वीडियो बना के डाल दिया कि भाई ऐसे तो ठीक है बंदा, इसके खिलाफ और कोई कंप्लेन नहीं है, बट ये जो उसकी सोच है इसके लिए कंपनी इसका साथ नहीं देगी. तो ऑनलाइन भाई की नौकरी चली गई. अब ये जो हमारे कॉमेडियन भाई साहब है, इन्होंने अपना इंस्टाग्राम भी डीएक्टिवेट कर दिया है बिकॉज ऑफ द बैकलैश एंड द हेटरेड दीज गाइस आर गेटिंग. सो दिस इज द होल सिचुएशन. एंड देन आई स्टैंड एंड थिंक एंड दिस आई हैव बीन सेइंग फॉर अ गुड लॉन्ग टाइम दैट व्हेन विल पीपल अंडरस्टैंड बाउंड्रीज, इवन कॉमेडियंस. लाइक कब समझेंगे ये कि भाई बहुत थिन लाइन है, नहीं क्रॉस कर सकते, नहीं हंस सकते, बिकॉज एक आम इंसान, नॉर्मल इंसान. एंड दैट इज वाई जब बंदिया कहती है दैट यू नो सारे लड़के एक जैसे, ऑल मेन आर लाइक दैट, दिस इज वाई. मतलब क्या क्या चल क्या रहा है ये सारी चीजें में. वाह, सीरियसली 370 रुपीज. मतलब मैं हूं तो मेरा तो हाथ वाथ ही चल जाए कि मुक्का मुक्का मार दू मैं, वैसा वाला सीन हो जाता है. बट देन या अगेन द मच्योर्ड मी सेज don't invest your energy on that. Yep. So that is what it is. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। फिलहाल चलो भाई इनको रखते हैं साइड में, हो गया, अभी आगे जाएंगे और आगे बढ़ते रहेंगे क्योंकि यहाँ पे 370 रुपए की तो बात होनी ही नहीं है।

0: Tushahi Maharani for the special treat.
1: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
2: Thank you, Shahi Maharani, for comforting and mouth-watering flavors.
1: Thank you.
3: Thank you.
2: Thank you.
0: Thank you. We love you.
4: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature wet and non-veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply.
5: Are you ready?
6: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
7: Take a break, laugh a little, and vibe a lot, because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Our mood change kare.
8: पिछले घंटे एक सवाल पूछा था मैंने, इफ यू रिमेम्बर, अ लॉट ऑफ पीपल, एवरीबॉडी एक्चुअली आंसर्ड करेक्टली, बिकॉज आप सब ही जानते हो यार, एवरीबॉडी इज प्रीटी मच अप टू डेटेड. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, 6 बजकर हो चुके हैं 20 मिनट. मैं हूं अंतरा आपके साथ. मिड वीक ब्लूज चल रहा है. पिछले घंटे पूछा था मैंने कि हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ऑफकोर्स मोदी जी. और आज ही ये बात, लाइक इट्स एवरीवेयर ऑन द इंटरनेट, भाई सबसे लंबा जो है आफ्टर नेहरू जी इज नाउ मोदी जी. वेल, उनको तो मैंने बता दिया, लेकिन अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना है तो चलो एकदम लायन के जैसे गुर्राते हुए आपको बताती हूँ, लेकिन मैं नहीं गुर्राऊंगी. द लायन सिटी चैलेंज, दैट इज राइट भाई. हम एक बहुत ही कमाल का गेम शो लेकर आने वाले हैं, विच इज एब्सोल्युटली आपका माइंड ब्लो हो जाएगा. बट ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी सब लोगों का माइंड ब्लो कर चुके हैं. आपको लगता है दैट यू आर यू नो सो वेल वर्स्ड विथ एवरीथिंग, चाहे वो जी के हो, आपका करंट अफेयर्स हो, एंटरटेनमेंट हो, स्पोर्ट्स हो, लाइफ स्टाइल हो, एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड यू, यू आर काइंड ऑफ अप टू डेट, देन दिस गेम शो इज जस्ट फॉर यू. सिंगापुर स्मार्टेस्ट गेम शो, जहां पे नॉलेज विंस. सो अगर आपको लगता है कि आप में वो बात है, ठीक है, कि जो है ये मेरे लिए ही बना हुआ है, एंड आई किड यू नॉट, लाइक द प्राइजेस एंड द विनिंग्स आर एब्सोल्युटली अमेजिंग. सो भाई कुछ फेजेस हैं, और बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट सिंपल, सो वेल फर्स्ट फेज में बस इतना करना है, अपना पार्टिसिपेशन जो है कि मुझे करना है पार्टिसिपेट, उसका इंटरेस्ट जाहिर करना है. एंड हाउ कैन यू डू दैट? LION, जस्ट टाइप लायन एंड सेंड अस टू टेक्स्ट अस एट 9151-8963. वंस यू डू दैट, ऑफकोर्स जो हमारी टीम द लायन सिटी चैलेंज की टीम है, वो आपको फर्स्ट फेज के 2 क्वेश्चंस भेजेगी. वो आप उनको जब आप जवाब दोगे तो उसके बाद आप सेकेंड फेज की तरफ सही जवाब दोगे, उसके बाद आप सेकेंड फेज में जाओगे, एंड देन द ऑब्वियसली द टीम विल गाइड यू टूवर्ड्स it and how it is going to happen and everything, but you have to take that first step, right? The lion, LION, text kar do hame 9151-8963 par. Bhai, don't just listen to the challenge, you have got all in you to be a part of it. Let's see if Singapore's smartest mind could be you. Yes, I'm talking to you. Aap kar sakte ho yaar, bhej to lion 9151-8963 par.

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज कर चेंज कर चेंज.
1: जिम्मेदारी का होता है मेरे पास अक्सर काम, और मुझे आज की डेट में दी थी किसी ने बहुत ही एक अहम जिम्मेदारी, जिसको जो है मैं निभा रही हूँ. वैसे तो मुझे बहुत ही ज्यादा टेम्पटेशन हो रही थी कि मैं ऐसी करके ना सारे नंबर कमा के लेके जाऊंगी, लेकिन आपको तो पता ही है मेरा नेचर कैसा है. वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, मैं हूं अंतरा आपके साथ. यहाँ पे चल रहा है मिडवीक ब्लूज, बट ये जो पीछे से थोड़ी थोड़ी आवाज जो आ रही है ना, वो है बर्थडे गर्ल की. हाय रानी.
2: इनाक्षी
1: सुन रही है. इनाक्षी सुनते हुए अभी रेडियो पे स्माइल कर रही है जहां पर भी है. बट फिलहाल अभी मैं और आप हो, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? लाइक आई एम कॉलिंग, आई एम लाइक मैं अंतरा रेडियो वस्ती से हैप्पी बर्थडे.
2: थैंक यू अंतरा, एक्चुअली इट्स रियली सरप्राइज फॉर मी.
1: I am sure. चलो ये तो हो गया भाई. इनाक्षी ने जो है मेरे को काम पे लगाया हुआ था, जैसे कि मैं बता रही थी अभी कि कर देना भाई हमारी बहुत ही प्यारी सी दोस्त का बर्थडे. मुझे ये बताओ, देखो अब उसने जो मुझे मैसेज दिया है, ठीक है, इस बात की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ इनाक्षी पे है. मैंने नहीं बताना था कि कौन कितने उम्र का है, ठीक है. तो उसने मुझे कहा है कहने को दैट यू आर नॉट 50, यू आर जस्ट 20 विथ 30 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. हेलो रानी, छुपी हो गई इसके बाद. हेलो रानी, कुछ तो बोल दो, मतलब इतना.
2: हेलो,
1: हाँ जी, कहाँ गायब हो गई?
2: टॉकिंग एक्चुअली, आई थिंक इन बिटवीन देयर इज अ ग्लिच.
1: ओ, मुझे लगा कि इनाक्षी के इस मैसेज को के पढ़ने के बाद रानी ने डिसाइड किया कि भाई आज तो बस, आज आखिरी दिन है, आज जितना करना है दोस्ती कर लो. she sent you a message saying you are not 50, you are just 20 with 30 years of experience.
2: Yes.
1: मुझे ये बात बताओ, यू अग्री विद हर? रानी मेरे को एक बात बताओ. Now that like everybody knows that like it's your 50th birthday, मैं जानना चाहती हूँ कि कोई जो आज 40 साल का है, ठीक है, today being at 50, what is that one advice you want to give to a 40 year old जो कि 10 साल बाद इसी पड़ाव पे जो है आएंगे?
2: Okay, I'll tell one thing.
1: One thing, tell me.
2: Do exercise, eat healthy, so stay healthy.
1: ये तो अच्छी बात हो गई. अच्छा ये वो बात बताओ जो उनको नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी. ओके, रानी इज चूजिंग क्वेश्चंस टुडे. शी इज चूजिंग कि मैंने इसके जवाब देने हैं और मैंने इसके जवाब तो बिल्कुल भी नहीं ही देने हैं. सो वेल या हम भी करते हैं, हमने भी अपने टाइम में कर रखा था कि हेलो आवाज नहीं आ रही. जो आई थिंक सो जेन हेलो, हाँ मुझे को लग रहा है जेन्युइनली रानी को मेरी आवाज नहीं आ रही थी. वापस आई थिंक वो ग्लिच ग्लिच आ गया. या बीच में से ना आप गायब हो जा रहे हो, एकदम परफेक्ट टाइम पे भी गायब हो रहे हो रानी आप. Okay, so well, Rani, happy birthday to you before the voice goes off again, and many many congratulations. I think भाई जिसने जिंदगी के 50 साल देखे हो ना, तो उसको बहुत सारा जो है वो देना, एक ब्रेवरी अवार्ड तो देना ही चाहिए, बिकॉज लाइफ इज लाइक दैट.
2: Absolutely.
1: But I hope
2: thank you so much Antra,
1: you have fun and you tune into Radio Masti is work just call kaatne ke baad, because I'm going to play the song Inakshi has requested for the both of you, which says Atrangi Yari from the movie Wazir.
2: Okay,
1: thank you, bye bye, happy birthday.
2: Thank you, bye bye.

डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस। डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: बाजू।
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: Alright, welcome back. Radio Masti 24/7 live पर traffic update का time हो चुका है 6:45 studio clock में वक्त हो चुका है. इस वक्त आपको मिलेगा vehicle breakdown on Jalan Bahar towards अगर आप जा रहे हैं AYE after Boonlay way avoid करें lane number 2. एक accident की खबर है on BKE towards Woodlands after KJE avoid lanes 1, 2 and 4. And heavy traffic आपको मिलेगा on AYE towards MCE between Lower Delta Road and Portsdown Avenue. So well, ये थी इस घंटे की traffic की up. फिलहाल के लिए बढ़ते हैं आगे एंड जाते हैं अगले गाने की ओर एंड आई विल बी राइट बैक बिकॉज ऑफ कोर्स अभी तो 8 बजे तक हमारा सफर बाकी है मेरे दोस्त.
3: ओ वेलकम है जी अपना ही गराज है

0: लटकी लटकी
1: बोल पेट्रोल ते पवाए नहीं
2: कोई गल नहीं साड़ी गड्डी ते गुडवेल नाल चलती है
3: Take a break, laugh a little, and vibe a lot because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Aao, mood change kare.
4: आओ तुम्हें चांद पे ले जाए ये सिर्फ एक गाना हुआ करता था लेकिन किसने सोचा था कि सालों सालों बाद ये बात बहुत आम सी बात हो जाएगी कि अच्छा चांद पे तो अभी मैं लास्ट वेकेशन पे ही होके आई थी रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूं अनुराग के साथ यहाँ पर मिड वीक ब्लूज चल रहा है बट देन दिस न्यूज इज फ्रॉम द स्पेस भाई नासा जो है उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है आर्टेमिस 3 मिशन का क्रू आज ही की बात है ये जो अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट स्पेस में से एक माना जा रहा है नाउ इस मिशन को लीड करेंगे वेटरन एस्ट्रोनॉट रैंडी प्रेसनिक एंड उनके साथ होने वाले हैं लुका पारमितानो जो कि इटली से है फ्रैंक रूबियो और आंद्रे डगलस नाउ ये मिशन जो है करंटली 2027 के लिए प्लान किया गया है इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये मिशन सीधा मून पर लैंड नहीं करेगा नाउ आर्टेमिस 3 कहा जा रहा है इसका काम ये होने वाला है कि अर्थ ऑर्बिट में कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके के टेस्ट वगैरह जो है वो करेंगे जैसे कि ओरियन स्पेसक्राफ्ट का डॉकिंग और रेंडेवू विद लूनार लैंडर्स बीइंग डेवलप्ड बाय स्पेसएक्स एंड ब्लू ओरिजिन अब सोचिए स्पेस में मल्टीपल स्पेसक्राफ्ट आपको मिलेंगे कनेक्ट होंगे और फ्यूचर मून मिशंस के लिए सिस्टम्स को टेस्ट किया जाएगा एंड इट वाज लाइक कल की बात लगती है इसी साल में ऑफकोर्स आर्टेमिस 2 ने हिस्ट्री क्रिएट किया था वो मिशन एस्ट्रोनॉट्स को मून के अराउंड लेके गया एंड सेफली अर्थ पर वापस भी आया व्हाट अ मोमेंट इट वॉज राइट ऑलमोस्ट अपोलो एरा के बाद ह्यूमैनिटी का नेक्स्ट जायंट स्टेप आर्टेमिस 2 ने ये भी प्रूव किया दैट नासा का ओरियन स्पेसक्राफ्ट डीप से स्पेस ट्रैवल के लिए एब्सोल्युटली रेडी है अब आर्टेमिस 3 जो है उस फाउंडेशन पर ही इसको बिल्ड किया जा रहा है ताकि आर्टेमिस 4 जो इसके बाद वाला है जो करंटली 2028 के लिए प्लान है एस्ट्रोनॉट्स को मून के साउथ पोल तक ले जा सके जस्ट इमेजिन 1972 के बाद फिर से ह्यूमंस मून पर चल सकते हैं लाइक नॉर्मली या वैसी वाली बात हो जाएगी कि अरे यार नेक्स्ट वेकेशन आई थिंक वी शुड गो फॉर मून एंड नासा का अल्टीमेट गोल जो है सिर्फ मून नहीं है मून को एक स्टेपिंग स्टोन माना जा रहा है फॉर द बिगेस्ट ड्रीम ऑफ ऑल ह्यूमन मिशंस टू मार्स चंदा मामा की कहानियां सुनते सुनते ये दिन आ गए कि आज चांद इंसानियत के नेक्स्ट एड्रेस की प्रिपरेशन कर रहा है स्पेस का फ्यूचर लिटरली हमारे सामने हमारी आंखों के सामने लिखा जा रहा है सो क्यूरियस आई एम सो सीरियसली इट्स अ जर्नी एंड वी हैव सीन सो मच नहीं ऐसा मैजिकल सा लगता है ना कि कहां से कहां तक जो है वक्त बदलते हुए पहुंच चुका है सो एडवांस आई टेल यू लेट्स टेक अ ब्रेक यप
5: अच्छा सुनो जरा ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा
6: हाँ जी जी
5: आधा kg मसूर दाल
6: जी जी
5: काजू किशमिश ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं
6: जी जी
5: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो
6: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर
5: क्या जी
6: जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप
5: वाजी क्या बात जी
6: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर
7: सिंगापुर प्रिपेयर फॉर इंपैक्ट
8: 3 2 1
9: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Lion Challenge. City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

0: का पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज करें.
1: सात बजे के उस पार रेडियो मस्ती 24/7 लाइव मिडवीक ब्लूज चल रहा है. मैं हूं अंतरा आपके साथ यहाँ पर. और ऑफ लेट जो है मुझे ऐसी फीलिंग आने लगी है. यू रिमेम्बर ऑफ दोस डेज जब इफ यू हैव बीन वन ऑफ दोस स्टूडेंट्स जो कि दे आर ट्राइंग टू कैच अप ओवर द स्पीड ऑफ द क्लास और वो टीचर जो है ना तूफान की स्पीड से सिलेबस आगे पढ़ाई जा रही है कि मतलब एक दिन में दो दो चैप्टर फिनिश हो रहे हैं. यूजुअली ये तब होता था जब एग्जाम आने वाले होते थे और टीचर का सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो जो लास्ट के कुछ क्लासेस होते हैं ना, तो वो एकदम तूफान रेल की स्पीड से. मुझे ऐसा ही फील होता है आज कल व्हेन आई टॉक अबाउट सोशल मीडिया एंड ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स एंड उसके अपडेट्स एंड एवरीथिंग. कितना मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को आधी से ज्यादा शायद चीजें जो है मैंने एक्सप्लोर ही नहीं कर रखी, एंड विच इज ट्रू एज वेल. मुझे इसमें एडमिट करने की जो है वो बिल्कुल शर्म भी नहीं आ रही है, बट देन ऐसा ही है. लाइक इंस्टाग्राम भी हाँ, बात बात पे इतनी सारी चीजें चेंज करता रहता है. हाँ नहीं, मैं इंस्टाग्राम में रीऑर्डर का ग्रिड का फीचर जो है इंट्रोड्यूस किया गया है, इन विच इंस्टाग्राम अलाउज द यूजर्स टू मैनुअली रीऑर्डर अपना जो है प्रोफाइल का ग्रिड, कि जो है आप रीअरेंज कर सकते हो अपने फीड को विदाउट डिलीटिंग या फिर आर्काइविंग द पास्ट पोस्ट्स. सो फॉर ऑल द ऑफ कोर्स इट इज फॉर द क्रिएटर्स एंड एवरीबॉडी. तो बड़ा ही हेल्पफुल है आई एम श्योर, एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दोज हु आर इनटू इट, दे नो व्हाट दे आर डूइंग एंड हाउ ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर बीइंग हेल्पफुल. इनफैक्ट ऐसा भी कहा जा रहा है दैट इंस्टाग्राम इज राइट नाउ अभी टेस्ट फेज में है. आपने ये नोटिस किया होगा कि लोग जो है ना दे कुछ कभी कभी क्या होता है कि ना दे डोंट वांट टू लाइक योर पोस्ट बट दे आर वाचिंग यू. तो अब जैसे आपने पोस्ट किया ठीक है, तो वो उसमें लाइक का बटन या फिर वो हार्ट का बटन विच इज लाइक जस्ट अ टैप राइट, बट देन देर आर पीपल मैं क्यों करूं, तो कुछ किया ही होगा इसने लाइक दैट काइंड ऑफ अ थिंग. बट अगर आप स्टोरी पे रहो तो उसमें आ जाता है ना हूं. सो अब इंस्टाग्राम ये कह रहा है कि अगर किसी ने गलती से भी जो है आपका पोस्ट भी देख लिया हो तो उसका भी नाम आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपके लाइक जस्ट सीन वाले लिस्ट में. मैंने कहा ये बढ़िया है भाई, ये जो पीछे पीछे चुप चुप के देखते रहते हैं पोस्ट लेकिन उस पर लाइक नहीं करते, तो मतलब वो वाला खुलासा ऐसे ही हो जाएगा. या नॉट बैड. जैसे व्हाट्सएप भी सारे अपडेट्स करते रहते हैं ना कि ऐसा कर देना चाहिए, ऐसा करते हैं डिलीट फॉर एवरीवन कर देते हैं. डिलीट फॉर एवरीवन ने भी अपनी जान ले रखी थी. एक अभी हाल ही में मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं किसी को गलती से कुछ भेज दिया गलत विंडो पे, एंड बिकॉज आई वॉज लाइक इन द पैनिक मोड एंड आई वॉन्टेड टू डिलीट फॉर एवरीवन, बट आई ओनली एंडेड अप डिलीटिंग फॉर माई सेल्फ. ऑप्शन आता है ना डिलीट फॉर ओनली मी एंड डिलीट फॉर एवरीवन, वो जल्दीबाजी में डिलीट फॉर ओनली मी हो गया, विच मींस दैट एक तो मुझे दिखेगा नहीं और अगले बंदे के पास जो चला गया वो तो चला ही गया है. एंड इट वाज अ गॉसिप सेशन जिसके बारे में हो रहा था. तो इसके आगे की कहानी और खून खराबा मत ही सुनो आप जानने के लिए, या तो आप अलग से पूछ सकते हो रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर. फिलहाल दिस क्यूटी पाई इज गोइंग टू प्ले दिस वाला गाना.

0: hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
3: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
4: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
5: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Musti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Musti 24/7. Email a brief intro to info@radiomusti.com.sg requesting for an application form.
6: Good morning.
7: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
8: हाँ जी जी,
7: आधा kg मसूर दाल,
8: जी जी,
7: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
8: जी जी।
7: Are you even listening? या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
8: अरे डार्लिंग, why to fear when जीजी मार्ट is there?
7: क्या जी?
8: जीजी, जीजी मार्ट, your personal grocer. Just log on to ggmartonline.com, grocery add to cart करो, check out करो और grocery at your doorstep.
7: वाजी क्या बाजी?
8: Order today from Gigi Mart, your personal grocer.
9: Take a break, laugh a little, and vibe a lot because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Musti 24/7. Aao, mood change kare.
7: भाई जी जी मार्ट में आम का सीजन जरूर खत्म हो गया, लेकिन ओ माय गॉड देयर आर सो मेनी थिंग्स आई वांट टू टॉक अबाउट इट टू यू। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूं अंतरा आपके साथ और चल रहा है मिड वीक ब्लूज। और मैं जो कहूं बस जी जी बोलते हुए ggmartonline.com पर चले जाइएगा एंड एक बार ऑर्डर करके ट्राई तो जरूर ही करिएगा, बिकॉज लास्ट टाइम जब हमने जिसको रेकमेंड किया था और जिन्होंने उसका लुत्फ उठाया है उनको पता है दैट हाउ हैप्पी एंड सैटिस्फाइड दे वर। सो अब आपकी बारी है। यू रिमेम्बर यू नो जब मैं कानपुर जाती हूँ ना तो हमारा एक बड़ा एक पांच स्टॉप होता है हमेशा, लाइक इट्स अ थिंग विद आवर फ्रेंड्स। ओके हम लोग वहां पर जाते हैं एंड माय थिंग वन ऑलवेज इट इज लाइक मीठा विदाउट सुपारी, बट देन गुलकंद थोड़ा सा ज्यादा डालना भैया। Usually it's so difficult, right? कि अगर आपको कभी ऐसे ही क्रेविंग हो एंड sometimes it happens, right? कि इसके लिए गुलकंद अगर हो जाता तो मजे ही आ जाते, बट देन कहाँ से करे, जो कहीं नहीं मिलेगा वो जीजी मार्ट ऑनलाइन में जरूर मिलेगा। यस इट्स दिस आयुर्वेदिक स्वीट प्रिजर्व फ्रॉम ये जो फ्रेश रूट्स पेटल से या नेचुरल शुगर से बनाया जाता है, इट हैज इट्स ओन बेनिफिट्स एज वेल। सो काफी सारी चीज, इट एक्ट्स एज अ नेचुरल कूलेंट भी है एंड यू नो इट हेल्प्स प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, आपका एनर्जी बढ़ाता है, फटीग यू नो रिड्यूस करता है, इट्स यूजफुल इन रिड्यूसिंग हेडेक्स एंड बर्निंग सेंसेशंस एंड अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स व्हिच गुलकंद डज। इट्स 100% प्योर एंड नेचुरल खादी स्कर गुलकंद जो है, 300 ग्राम का डब्बा जो है $2.3 ओनली एंड दैट यू विल फाइंड वेयर ggmartonline.com में। दिस अनदर वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट विच यू मस्ट ट्राई, जामुन ट्राइंगल्स। यस दीज आर दीज अमेजिंग इंडियन स्वीट ट्रीट, इट्स लाइक द परफेक्ट ब्लेंड ऑफ जामुन का फ्लेवर विद दिस क्रिस्पी गोल्ड एक्सटीरियर एंड लाइक सॉफ्ट मेल्ट इन योर माउथ काइंड ऑफ सेंटर एंड यू नो इट्स जस्ट एक बहुत ही अमेजिंग। सो ये सारी चीजें जब आप घर में किसी को बुलाते हो एंड यू सर्व इट विद, मतलब फिर लोग आपसे पूछेंगे, गारंटी पूछेंगे ये कहाँ से किया, एंड देन यू कैन टेल देम दैट यस ggmartonline.com पर जाकर आप ये सारी चीजें बिल्कुल ले सकते हैं। 135 ग्राम का ये जो डब्बा है इट्स फॉर $4 ओनली। सो फॉर ऑल दीज अमेजिंग काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड द कृषि वर्ल्ड नट्स एंड एवरीथिंग, जस्ट गो लॉग इन एंड सी दिस वर्ल्ड ऑफ अमेजिंग प्रोडक्ट्स विच यू आर गेटिंग ओवर देयर। ऑर्डर देम, ट्राई देम, लेट अस ऑल्सो नो इफ यू हैव ट्राइड एनीथिंग एंड यू नो वी आर वेरी मच ओपन टू द फीडबैक यू हैव फॉर इट। सो वेल अगर करें तो ggmartonline.com से करें, दैट्स व्हाट, यही हवा में मैं यही कह रही हूं, आप भी कहिए जी जी अंतरा जी।
10: किनिया किनिया गल्ला वे तू
1: करदा है ये निया मेनिया गल्ला ते तू लड़

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज कर चेंज कर चेंज.
1: 7:36 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में. वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतर आपके साथ यहाँ पर. एंड गेस हु इज गोइंग टू मेक अ कमबैक वेरी वेरी सून. नॉट दिस ईयर डेफिनेटली, बट काम चालू हो गया है दोस्त. सी भाई, हमारी कैटरीना द कैफ वो चली गई थी एक ब्रेक पे, बिकॉज ऑब्वियसली शी गेव बर्थ टू अ ब्यूटिफुल बेबी बॉय. एंड भाई विकी कौशल और उनके घर में एकदम विहान नाम रखा है उसका. एंड सब सबके पास एक ही सवाल होता है उसके. देखो क्या है ना, सोसाइटी बड़ी ही सिंपल सी है, मासूम सी है. वो बस हर बार में एक नेक्स्ट क्वेश्चन डाल देती है कि बेटा अब ये हो गया है तो अब बताओ कि जब तुमने ये सब कर ही लिया है तो अब कुछ नौकरी वोकरी करने का सोचा हुआ है कि मतलब ऐसे ही रहना है. बट एनीवेज, सो कैटरीना कैफ जो है अपेरेंटली शी इज गोइंग टू मेक हर कमबैक इन 2027 विद एन OTT project, because obviously aajkal ka everything go to is OTT. It is the way to go and it has exploded like anything. Kabhi kabhi to mujhe options mein hi itni confusion ho jati hai, but pata nahi, tell me if you feel the same like what I'm feeling right now. There are times when I seriously don't want to go back to OTT. I mean, बिकॉज देर आर सो मेनी ऑप्शंस कि समझ में नहीं आता है. कभी कभी होता है कि मैं बहुत बहुत टाइम तक कोई चीज ढूंढती रहती हूँ कि कुछ अच्छा मिल जाए, कुछ अच्छा मिल जाए. एक घंटा निकल जाता है एंड देन आई एम लाइक यार ये क्या, ये मतलब नहीं देखना मुझे कुछ भी. या आई एंड अप डूइंग दैट एंड आई एम एंड अप नॉट वॉचिंग एनी थिंग विच पहला मेरा इंटेंशन ही वही था कि मेरे को कुछ दिखा दो, समथिंग आई वुड लाइक. बट देन एंड देन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई एंड अप repeating myself with some movie or some series. मैं वापस उन चीजों में चली जाती हूँ because it's so difficult to find out. either या तो कोई मुझे बता देता है कि ये वाला जो है check out करो, go watch the series. so I kind of start, but I am slow. I'm definitely slow. I'm clearly slow. Radio Masti 24/7 live पर आप कैसे देखते हो? आप when was the last time you binge watched some series? like aapne shuru kiya and then you got hooked and then you were not able to ki bhai ye to aaj complete karke hi raat nipteki chahe iske liye subah hi kyun na ho jaye. arsa ho gaya mujhe aisa kiya hua, but well aap batao kaun si series thi wo jab aapne usko binge watch kiya ho like completely. radio musti 24/7 live, yeah, 915 8963, that's the number. batao

0: 9151-8963.
1: Thank you to Shahi Maharani for the special treat.
2: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
3: Thank you, Shahi Maharani, for comforting and mouth-watering flavors.
2: Thank you.
4: Thank you.
3: Thank you.
1: Thank you. We love you.
5: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature Veg and Non-Veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply.
0: Take a break, laugh a little, and vibe a lot because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Aao, mood change kare.
6: Wow, lovely. I got quite a few recommendations over here. Like, aap log kafi kuch binge watch kar rahe ho. Ekdam shahi feeling aa gayi mujhe ki bada hi ekdam apne aap ko kabhi matlab कभी नहीं, हमेशा ही रॉयल ट्रीटमेंट देना चाहिए. नहीं, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतराब के साथ मिडवीक ब्लूज आप सुन रहे हो. बाय द वे, शाही महारानी पे जो है अमेजिंग ऑफर चल रहा है. शाही महारानी इज सेलिब्रेटिंग 25 इयर्स राफल सिटी में. उनको 25 साल हो गए, वो अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई कुछ ऐसा है कि आपके जो सबसे चहेते शाही क्लासिक सिग्नेचर डिशेज है वो $25 प्लस में वो आपको वहां पर मिल जाएगा. एंड दिस ऑफर इज ओनली टिल 30th जून, जिसमें टाइम नहीं बचा है. आप देख रहे हो ना कि स्पीड से वक्त निकला हुआ जा रहा है. आज 10 जून हो चुकी है ना. सो वेल, इसी महीने में जो है फटाफट से रिजर्वेशन कराए, प्लान बनाए, जाए वहां पर. व्हेन यू स्पेंड $100 प्लस विच इज सो नॉर्मल, जब आप बाहर खाना खाने जाते हो शाही महारानी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट जैसी जगह पर, जहां पर नॉट ओनली द होल एटमोसफेयर इज सो रॉयल एंड शाही, द फूड इज गुड. आई मीन I can go for good food anywhere. And Shahi Maharani to matlab hamesha se hi it has been one of the go-to places. Whenever, like, even for my mom as well. She loves wahan ka khana and the taste and, you know, ab aisa to hota nahi hai. We all look for Indian places, right? So, aapne bhi agar wahan pe try kiya hua hai. So, this is the mahina when you should go for it and celebrate it again over there. ठीक है, वो तो है ही है. मतलब हर जगह पे ऑफर चल रहा है. बस तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये इस टाइम पे नॉट बैड. जैसे जॉय लुकास भी जो है उनका एक ऑफर चल रहा है जो 14 जून को, बस 4 दिन और बाकी है. इट इज गोइंग टू गेट ओवर देयर, गोइंग दिस बिगेस्ट ज्वेलरी सेल विच इज गोइंग ऑन ओवर देयर. 40% ऑफ मिल रहा है ऑन द मेकिंग ऑफ गोल्ड डायमंड पोलकी एंड प्रेशियस ज्वेलरी. कैन यू बिलीव इट? नो, 14 जून के बाद भी बिलीव नहीं करोगे. तो इसी सील के जब तक वक्त है, 4 दिन बाकी है, आई थिंक यू शुड जस्ट मेक द फुल यूज ऑफ इट. 312-420 सरोगुड रोड, वेर एवर यू वॉन्ट टू गो जस्ट गो. दे हैव गॉट अमेजिंग वराइटी, दे हैव गॉट अमेजिंग कलेक्शन. जस्ट मेक द मोस्ट ऑफ द टाइम. जब हम लोग बता रहे हैं तो फिर आप मान ही लो ना, है ना. मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ. दैट्स द गाना कमिंग अप नेक्स्ट ऑन रेडियो मस्ती 24/7.

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मेरे को काटना पड़ गया क्योंकि मैं ना इतनी ज्यादा खो गई थी गाने में और गाते गाते अचानक से मेरी नजर पड़ी क्लॉक पे. मैंने कहा ओ माय गॉड, ये तो वक्त खत्म हो जाएगा, मुझे बाय बोलने का भी ये मौका नहीं मिलेगा. सो वेल क्विकली लेट मी टेल यू, आई होप यू एंजॉय द शो. एंड बस मेरा यहां से जाने का वक्त है, मैं कल वापस से आपसे मिलूंगी, 90s वाला शो लेकर आऊंगी 11 बजे. सो वेल मेक श्योर दैट यू ट्यून इन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, यू विल रियली हैव अ गुड टाइम. एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दोस थिंग्स भाई, Lion City Challenge के लिए do not forget, if you have not sent us Lion लिख के to 9158963 then you are still a step away from winning a lot of good things. Okay, so if you have got it in you and you are smart and intelligent and you keep yourself up to date, this is the game show you have to participate in. Lion City Challenge, text कर देना Lion at 9158963. चलो इसी बात पे, bye bye, tata, have a great and awesome night. I'll see you tomorrow.

0: देखो देखो वो आ गया।
1: सिंगापुर, जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

0: यादों का कारवा विद समर, याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने। तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवा में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: हेलो नमस्कार आदाब, एक बार फिर से आपका स्वागत। मैं हूँ समर। ये जो समर है ये अंग्रेजी वाला समर नहीं है, मतलब जिसे मौसम वाला समर कहते हैं, गर्मी वाला। रेणुका और अंतरा आप भी सुन लीजिए, ये रेणुका है ना, मुझे अक्सर यही कहती हैं, ये समर है इसीलिए बहुत हॉट है। थैंक यू वेरी मच रेणुका फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। लेकिन समर का मतलब गर्मी नहीं है, समर का मतलब होता है युद्ध, वॉर। समर प्रताप सिंह, नाम सुना होगा आपने, जब तक है जान में शाहरुख खान का नाम था भाई। वैसे ये जो समर है ये आपको कई मौसमों का, बदलते रंगों का, रंग के नए अंदाजों का और नए अंदाज से जुड़े कलाकारों के साथ गीतों का, फिल्मों का, फिल्मों से जुड़ी कहानियों का तारुफ करवाएगा, उनसे मिलवाएगा आपको, कहानियों के पन्ने पलटेगा और पन्नों पर किरदार कौन कौन से हैं और उनकी कलाकारी की बात करेगा। तो आज मैं बात करूंगा नई सदी की, जी हाँ, न्यू मिलेनियम। 2000 से 2010 के डेकेड की हम बात करने वाले हैं और आज मेरे साथ इस यादों की कारवां पर कौन कौन सी फिल्में, कौन कौन से गाने, उसके लिए आपको मेरे साथ रहना होगा सिंगापुर रेडियो 24/7 लाइव पर। शुरुआत में ही प्यार की बात कर लेते हैं। वो क्या ना कि इंडिया में आजकल बरसात का मौसम चल रहा है, काश कोई ऐसे में वहां पर मोहब्बत के बीज बिखेर दे। बारिश शायद मोहब्बत पनप आए, है ना। तो प्यार एक ऐसी कहानी है, भूल भुलैया है, जिसका कोई छोर होता नहीं है, बड़ी गहरी खाई की तरह होता है या समंदर की तरह बहुत ही गहरा था। फिर भी न जाने क्यों लोग ये सब जानते हैं, लोग फिर भी न जाने क्यों लोग प्यार करते हैं, ये भी एक सोचने वाली बात है। और यही गाना है हमारा जो अगला गाना है फिल्म दिल चाहता है का, जाने क्यों लोग प्यार करते हैं। समंदर किनारे खोई हुई बैठी एक खूबसूरत सी डिंपल वाली लड़की प्रेटी ज़िंटा और उनको खोया हुआ पाकर क्यूरियस आमिर खान पूछते हैं यही सवाल, और पूरे गाने में प्यार पर बहस करते करते और एक दूसरे को समझाते हैं, छेड़खानी करते, मुस्कुराते और गुनगुनाते हैं। जावेद अख्तर साहब की कलम से निकला ये बेहतरीन नगमा और ये फिल्म थी उन्हीं के सुपुत्र फरहान खान की पहली फिल्म दिल चाहता है एज ए डायरेक्टर। फिल्म दिल चाहता है एक बेहतरीन फिल्म साबित हुई जिसके गाने आज तक, यानी आज इस साल, काफी फेमस हैं और दिल वाकई चाहता है उन्हें। आमिर खान, अक्षय खन्ना, सैफ अली खान, प्रीटी ज़िंटा और सोनाली कुलकर्णी के साथ डिंपल कपाड़िया भी थी। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि अक्षय खन्ना और डिंपल कपाड़िया का प्यार दिखाया गया इस फिल्म में। हालांकि उनके बीच एज डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, लेकिन हर तरह का प्यार है इस फिल्म में। यह फिल्म कमाल की फिल्म है, सभी एक्टर्स ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। फिल्म में इमोशंस हैं, रोमांस है, फ्रेंडशिप से जुड़े अप्स एंड डाउन्स हैं, और वही बात कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती, ये बात भी ये फिल्म साबित करती है। और जैसे कि मैंने कहा था कि एक न्यू मिलेनियम की बिगिनिंग थी ये, तो इस फिल्म में गाना भी है, कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना, हम लोगों की ठोकर में है ये जमाना। फिलहाल आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे बताइए, फिलहाल मेरे गाने हैं कहाँ, ये लीजिए, शुरू करते हैं आज का यादों का कारवां। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मसी 24/7 लाइव पर समर के साथ।

0: आपकी नॉलेज आपकी जीत।
1: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: 40% off, 40% joy, Lucas.
3: 40% off? Oh my God! Let's go, let's go!
4: Offer ऐसा कि आप भी खुद को रोक नहीं पाएंगे. Joya Lucas लाया है the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joya Lucas, the world's favorite jeweler.
5: यादों का कारवां विद समर, आप सुन रहे हैं रेडियो मसी 24/7 लाइव और वेलकम बैक। आज बात नए जमाने की हो रही है, नए मिलेनियम की हो रही है। जी, यादों का कारवां अब 2000 में प्रवेश कर चुका है, आ चुका है। एक और बेहतरीन फिल्म आई थी, बड़ी खूबसूरत, और जिन्होंने भी प्यार किया है इसके दो चार गाने तो जरूर गुनगुनाए होंगे। मैं जिस फिल्म की बात कर रहा हूँ उसमें एक म्यूजिक शॉप ओनर का लड़का है जो कि बड़ा ही चंचल है, थोड़ी सी बदमाशी करता है, भाई जवान है, अब अपने दोस्तों के साथ रहता है, कॉलेज का दादा है, उसके राइवल्स भी हैं, पर हीरो है वो, जिसके पापा चाहते हैं कि वो उनका बिजनेस संभाल ले, पर मैडी, समझ गए? जी, माधवन ने ही रोल किया था मैडी, बस वो लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं और अपने प्यार को पाना चाहते हैं। कौन सी फिल्म थी ये? RHTDM, रहना है तेरे दिल में, मीनिंग वॉन्ट टू स्टे इन योर हार्ट, जो कि एक ख्याल है, इमोशन है। प्यार को पाने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़े तो लिया, पर पकड़े जाने पर नफरत से गुजरना पड़ा, फिर दुख दर्द पीड़ा उससे भी गुजरना पड़ा, फिर भी आस नहीं छोड़ी, कोशिश करता रहा कि जो रूठा है वो मान जाए, और जिससे प्यार करता है उसकी शादी हो रही है उसके राइवल से, जिसका किरदार निभाया है सैफ अली खान ने। देखिए ना अपनी पिक्चर, तो फिर मैं कहानी क्यों सुना रहा हूँ? अच्छा, शायद आप भूल गए हो इसलिए। वो प्यार जिसको पाने के लिए पूरी फिल्म बनी है वो है खूबसूरत दिया मिर्जा। फिल्म के गानों ने जो कमाल किया था वो कमाल आज भी कायम है। एक जादू है इस फिल्म के गानों में, प्यार को एक तस्वीर की तरह दर्शाया है जो कि खूबसूरत है पर उसमें दर्द है, पर दर्द के साथ जुदाई है और फिर मिलन की खुशी भी है। इस फिल्म का वो गाना है ना, सच कह रहा है दीवाना, दिल दिल न किसी से लगाना। इस गाने में एक्टर माधवन अपने दोस्तों को अपने दर्द की कहानी सुनाते हैं, और उसमें एक सीन है जब वो बिलबोर्ड पर अपनी हीरोइन को देखते हैं और उनकी आंखों से आंसू टप टप बहने लगते हैं। उफ, मेरे ख्याल से उस वक्त जिसने भी ये फिल्म देखी थी, सिनेमा हॉल में बैठे हर दर्शक की आंख गीली हो गई थी उस वक्त, क्या इमोशंस थे। और माधवन छा गए थे इसी फिल्म से, उन्होंने डंका बजा दिया था कि भैया मैं आ गया हूँ। और वो जो बेहद रोमांटिक गाना है, जरा जरा महकता है बहकता है आज ये दिल, ये जो फिल्म है रहना है तेरे दिल में, इसका म्यूजिक दिया था हैरिस जयराज ने। ये पहला मौका था जब वो हिंदी फिल्मों में म्यूजिक दे रहे थे। हैरिस चेन्नई के रहने वाले हैं और उन्होंने बहुत कमाल का म्यूजिक गढ़ा है वहां की फिल्मों में भी, और उसकी वजह शायद ये रही कि उन्होंने बहुत ही कमाल के जो म्यूजिक डायरेक्टर्स रहे साउथ के, राजकोटी साहब, AR रहमान, मणि शर्मा, कार्तिक राजा, विद्यासागर, उनको असिस्ट किया है। और शायद आपको नहीं पता होगा कि उन्होंने एडिशनल प्रोग्रामर के तौर पर रहमान साहब के अंडर में रहकर बहुत सारा म्यूजिक कंपोज किया, बहुत सारे कमर्शियल्स के लिए म्यूजिक कंपोज किया है, जैसे कोका कोला का जो कमर्शियल है ना, साउथ का है ये, आपने शायद नहीं देखा होगा, उसमें जो म्यूजिक है उसकी प्रोग्रामिंग हैरिस जयराज ने ही की है। और शायद आपको ये नहीं पता हो कि जो गजनी फिल्म थी उसका स्कोर भी इन्होंने किया था, और उसके लिए उन्हें तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर मिला था। मैं हिंदी वाली गजनी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो साउथ में बनी थी, हिंदी में तो उसका रीमेक था, हिंदी वाली फिल्म का वैसे भी म्यूजिक AR रहमान ने दिया था। तो ऐसे हैरिस जयराज भी इस फिल्म के साथ बॉलीवुड में एंट्री ले रहे थे। मैडी, दिया मिर्जा, हैरिस, ये तीन लोग नए थे, ये तीनों इस फिल्म के साथ बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे थे और कमाल की डेब्यू की इन्होंने। फिलहाल ये काम करते हैं इस फिल्म से और उस दौर के कुछ और नगमों से इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं। सुनते रहिए यादों का कारवां विद समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर।

वेलकम बैक। एक बार फिर से लौट आया हूँ। मैं हूँ समर रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। आज मैं बातें कर रहा हूँ नए मिलेनियम के पहले डेकेड की, 2000 से 2010 तक की बेहतरीन फिल्में, उनके गाने और उनकी बहुत सारी अनकही बातें। फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं होती है, फिल्म कई चरित्र आपके दिलो दिमाग पर उतार देती है। फिल्म एक स्टोरी होती है, कहानी जो रियलिटी से गुजरने वाले इमोशंस और किरदारों की कहानी जो रियलिटी से गुजरने वाले इमोशंस को बयां करती है, किरदारों की बात करती है। फिल्म को बनाने के साधन बनावटी होते हैं, पर फिल्म की कहानी और इमोशंस काफी हद तक असल होते हैं। उतना आसान नहीं होता है फिल्म में उसे उतारना, इसीलिए ये जो कलाकार होते ना, ये फिल्म में उसे उतारने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, चाहे वो म्यूजिक हो या डांस हो। फिल्म एक प्ले की तरह होता है जिसका आप पर्दे पर आनंद उठा सकते हैं। आने वाला जो गीत है आप समझ जाएंगे, वो है फिल्म लगान से, आशुतोष डायरेक्टर की। ये फिल्म कमाल की फिल्म थी। हालांकि आमिर खान इसके प्रोड्यूसर थे, लेकिन आशुतोष गोवारिकर ने इसे बड़े कैनवास पर सोचा और वैसी ही बेहतरीन फिल्म बना डाली। आमिर खान इसके हीरो और ग्रेसी सिंह उनकी हीरोइन। और ये जो गाना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, इसमें ऑलमोस्ट ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ द फिल्म, मतलब उस गाँव के लगभग सभी कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। ये गाना है घनन घनन घेरे घेरे आए बदरा। इस उम्मीद पर यह गाना गाया जा रहा है कि बादल आ रहे हैं, बरसेंगे और उन्हें लगान से छुट्टी मिल जाएगी, क्योंकि इस बार अच्छी फसल होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इस बार भी लगान देना पड़ता है, और इस बार तो कमाल का लगान देना पड़ता है, क्योंकि एक शर्त लग जाती है। ब्रिटिश राज के खिलाफ एक ऐसी ब्लडलेस क्रांति है ये फिल्म, जो क्रिकेट पर बेस्ड है। जब मैंने ये फिल्म देखी थी तो मुझे इसकी कहानी के बारे में पता नहीं था, और जब देखी तो आप यकीन नहीं करेंगे, जो सेकंड हाफ में इसमें जो क्रिकेट मैच है ना, उसमें मैं सिनेमा हॉल की सीट पर बैठा ही नहीं, बार बार उछल जाता था, खड़ा हो जाता था। मेरे दोस्त मुझे पकड़कर बिठा देते, यार बैठ जा, फिल्म देख ले, पीछे वाले परेशान हो जाएंगे। ये है इस फिल्म के साथ मेरी जुड़ी यादें। अगर आपकी भी कुछ ऐसी यादें हैं किसी भी फिल्म के साथ, तो हमसे जरूर शेयर कीजिएगा रेडियो मसी 24/7 लाइव के पेज पर आकर। फिलहाल ये गाने सुन लेते हैं, सफर को आगे बढ़ाते हैं।

0: वेलकम बैक समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं यादों का कारवां। भाई आज हम 2000 से 2010 की उन बेहतरीन फिल्मों को याद कर रहे हैं जिनके नगमे, जिनकी कहानी, जिनके किरदार आपके दिल में हमेशा हमेशा के लिए बस गए। वो जो डायलॉग कहे गए वो आज भी आपको याद है, वो जो गा गए स्क्रीन पर वो गाने आज भी गुनगुनाते हैं आप। तो आज अभी इस वक्त मैं जो बात करने वाला हूँ वो फिल्म है, अच्छा गाना सुनाता हूँ उसका, आप समझ जाइए। आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा, इसमें छिपा है जीवन का फलसफा, अंडे का फंडा, फंडे में अंडा अंडा। गाना तो आपने सुना है, गाना तो आपने सुना है, लेकिन ये कौन सी फिल्म है आपको पता है? ये फिल्म है उस डायरेक्टर की डायरेक्ट की हुई जो नंबर वन नाम के टाइटल से फिल्में बनाते रहे, कुली नंबर वन, हीरो नंबर वन। जी हम बात कर रहे हैं जोड़ी नंबर वन फिल्म की, जिसके एक्टर्स हैं गोविंदा और संजय दत्त और जिसे डायरेक्ट किया डेविड धवन ने। वैसे इस फिल्म की कहानी बड़ी मजेदार है। दो दोस्त हैं जिनका प्रोफेशन है लोगों को उल्लू बनाकर उनका पैसा लूटना। मतलब कौन मैंने जी, वो इससे पहले भी गोविंदा और डेविड धवन ने बहुत सारी हिट फिल्में दी, कौन नहीं जानता इनकी जोड़ी को, जैसे कि राजा बाबू, बड़े मियां छोटे मियां और भी बहुत सारी। पर असल जिंदगी में डेविड धवन और गोविंदा आपस में बात नहीं करते, नाराज हो गए। अब किस वजह से हो गए ये नहीं पता मुझे, लेकिन एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि डेविड धवन को जब गोविंदा के बुरे वक्त में साथ देना चाहिए था तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए उन्होंने फ्यूचर में डेविड धवन की फिल्मों में काम नहीं करने का सोच लिया था। मेरे ख्याल से गोविंदा का ये फैसला उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि उसके बाद गोविंदा का भी डाउनफॉल आ गया था। गोविंदा अब हालांकि कमबैक करने की कोशिश करते हैं बार बार, लेकिन अभी उतने सक्सेसफुल नहीं हुए, पर वो एक गजब के एंटरटेनर है इसमें कोई शक नहीं है, और हम चाहेंगे कि वो बहुत जल्द वापस लौट कर आए। फिलहाल गाना सुन लें, अंडे का फंडा, क्या बोलते हैं आप, जोड़ी नंबर वन से सिर्फ आपके लिए रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव पर, और उसके साथ कुछ और नगमे उसी दौर के। स्टे कनेक्टेड।
1: अंडा अंडा अंडा अंडा, हम सब ने देखा है, कई बार देखा है, पर क्या कभी सोचा है इस अंडे का क्या फंडा है, ये कितना गहरा है, इस टकले सर के अंदर एक ब्रेन सुनहरा है, ये कुछ समझाता है, ये कुछ सिखलाता है, जरा गौर।

0: Shahi Maharani for the special treat.
1: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
2: Thank you, Shahi Maharani, for comforting and mouth-watering flavors.
1: Thank you.
3: Thank you.
2: Thank you.
0: Thank you. We love you.
4: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature Veg and Non-Veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
5: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
6: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
7: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
8: Good morning!
9: एक गरम चाय की प्याली हो, थक, थक, थक, थक, कोई उसको पिलाने वाली हो, चाय गोरी हो या काली हो, सीने से लगाने वाली हो, मिल जाए तुम। दररम पम पम दररम पम पम दररम पम पम वेलकम बैक। जिसे मिल गई उससे पूछिए वो क्या चाय पिलाती है कि नहीं। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत। मैं हूं समर रेडियो मसी 24/7 लाइव और एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं यादों का कारवां। नहीं मतलब हाजिर तो मैं काफी देर से हूं, आपके साथ फिर से मुखातिब हूं। जिस कलाकार की अब हम बात करने जा रहे हैं ना यादों का कारवां में, वो अपनी आवाज, अपने म्यूजिक और अपने म्यूजिक की स्टाइल के लिए बड़े फेमस है, और वो है, समझ गए आप, अनु मलिक जी। अनु मलिक जी की बात होगी यहाँ पर। उनकी जो स्टाइल है सिर्फ एक गर्म चाय की प्याली और ऊंची है बिल्डिंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने ऑडियंस को काफी डिफरेंट स्टाइल के गाने भी दिए हैं। जैसे एक गाना गाया था ना उन्होंने, देखो बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग इट्स रेनिंग इट्स रेनिंग, मेरा दिल रो रहा है, इट्स पेनिंग इट्स पेनिंग इट्स पेनिंग। वो मुझे ऐसा लगता है कि गाने के मुखड़े भी वो खुद ही लिख लेते हैं। वैसे बात सही भी है, गाने के मुखड़े अक्सर कंपोजर ही दे देता है लिरिक राइटर को कि भैया देखो ऐसा कुछ लिख दो, लेकिन इन्हीं अनु मलिक ने बॉर्डर जैसा बेहतरीन हिट म्यूजिक भी दिया है। और फिर मर्डर का वो गाना कैसे भूल सकते हैं आप, भीगे होंठ तेरे, या फिर रेफ्यूजी से बेहतरीन नगमे अनु मलिक के डायरेक्शन से निकले हैं। जब सिर्फ 8 साल के थे ना, महज 8 साल के, तभी से उन्होंने गाने बनाना शुरू कर दिया था। 19 साल की उम्र में तो वो हिंदी फिल्मों में म्यूजिक देना भी शुरू कर चुके थे। बड़ा स्ट्रगल का दौर देखा उन्होंने भी, बसेस में धक्के खाते थे, प्रोड्यूसर के यहाँ चक्कर काटते थे, बड़े लोगों ने टांग भी खींची उनकी ये कहकर कि यार अनु मलिक कहीं भी गाना शुरू कर देता है। पर अपनी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि हाँ ये बात सही है, मैं कहीं भी गाना शुरू कर देता था। और जो पहला म्यूजिक का उन्हें ब्रेक मिला था ना, यू वोंट बिलीव कि उन्होंने जो प्रोड्यूसर थे इस फिल्म के, उन्हें कहाँ सुनाया गाना, यूरिनल्स में जी, क्योंकि प्रोड्यूसर उनको भाव नहीं दे रहे थे, उनको टाल रहे थे, तो उन्हें लगा कि यार ये अच्छा मौका है, यहां से कहां जाएंगे, यहां अपना गाना सुनाई देता हूं। तो जैसे ही उन्होंने अपनी पहली कंपोजिशन सुनाई तो प्रोड्यूसर जो थे उनको वो जच गई, तो उन्होंने कहा यार एक और सुनाओ, और बाहर आते आते तक उन्होंने 2-3 कंपोजिशन सुना दी अपनी। प्रोड्यूसर को वो कंपोजिशंस पसंद आ गई और उन्होंने उन्हें साइन कर लिया फिल्म सोनी महिवाल के लिए। तो ये जो पागलपन, ये जो दीवानापन, ये डेडिकेशन होना चाहिए, तब जाकर आप एक बेहतरीन अदाकार, एक बेहतरीन कलाकार, एक ऐसे कलाकार जिसकी हम आज बात करें, एक लेजेंड बनते हैं। तो चलिए यादों की कारवां में इन नगमों के साथ इस सफर को आगे बढ़ाते हैं, यादें फिल्म से कुछ गाने लाते हैं, क्या कहते हैं आप, आइए सुन लेते हैं।

0: देखो देखो वो आ गया।
1: सिंगापुर, जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

0: यादों का कारवां विद समर, याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने, तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवां में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: यादों का कारवां है, ये मैं हूँ समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। क्या बेहतरीन वक्त था वो, एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में उस दौर में आ रही थी, आज भी आती हैं। लेकिन अगर आज की फिल्मों से उन्हें हम कंपेयर करें तो पहले की फिल्में ज्यादा रोमांटिक हुआ करती थी, ऐसा मुझे लगता है। पिछले कुछ 7-8 सालों में ही इतना चेंज आ गया लाइफ में, ड्रेस्टिक चेंजेस हुए। जैसे कि आज की फिल्मों में ना ज्यादा स्पेशल इफेक्ट्स का यूज होता है, ग्राफिक्स और मिक्सिंग काफी बढ़ गई है, रोमांस में थोड़ा स्पेशल इफेक्ट का मजा है। फोटोग्राफ्स हो या वीडियो, एवरीथिंग हैज बीन मेड परफेक्ट, जैसे कि परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट स्किन और परफेक्ट रिलेशनशिप। 2001 की फिल्म थी एक साथिया, आहा क्या फिल्म थी। इस फिल्म में एक लव मैरिज के ड्रॉबैक्स भी दिखाए गए, उसमें आने वाली परेशानियों को दिखाया गया, उतार चढ़ाव को बड़ा खूबसूरती से दिखाया गया। चौल में रहने वाली एक लड़की है, उससे प्यार हो जाता है, हीरो थे विवेक ओबरॉय, हीरोइन थी उसकी रानी मुखर्जी। फिल्म मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी, बड़ा अपील कर दिया फिल्म, और इसके गाने एक से बढ़कर एक, चाहे वो साथिया टाइटल ट्रैक हो इस फिल्म का, या फिर खिड़की से चांद आएगा, आई लव दैट वन, वंडरफुल, या फिर छलका छलका रे, या फिर हे उड़ी उड़ी उड़ी, अदनान समी की आवाज में बेहतरीन मदहोश कर देने वाला गाना। म्यूजिक ए आर रहमान का था और गाने लिखे थे नन अदर देन गुलजार साहब ने, बहुत कमाल के गाने भाई। अब यार रहमान साहब का तो नाम ही काफी है कि नहीं। तो एक काम करते हैं, इस फिल्म से और उस दौर के कुछ और बेहतरीन नगमों से इस खूबसूरत सफर को आगे बढ़ाते हैं। क्या कहते हैं सिंगापुर? आपको अगर इन फिल्मों से रिलेटेड कोई चीज याद आ रही है या इनके साथ आपकी कुछ यादें जुड़ी हुई हैं, तो हमारे फेसबुक पेज पर आकर आप बिंदास अपनी यादें शेयर करते रहिए और सुनते रहिए सिंगापुर का एकमात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो, रेडियो मसी 24/7 लाइव।
2: मधम मधम तेरी गीली हंसी,

0: 40% off. 40% joy alukas.
1: 40% off. Oh my god. Let's go. Let's go.
2: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Joya Lucas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joya Lucas, the world's favorite jeweler.
3: आपकी नॉलेज आपकी जीत.
4: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
5: कुछ फिल्में चैलेंज की तरह से लेते हैं एक्टर्स. नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है. मैं हूं समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव, और आप सुन रहे हैं यादों का कारवां. एक ऐसी फिल्म जिसका मैं जिक्र करने वाला हूं, उसे ज्यादातर एक्टर्स ने चैलेंज के तौर पर लिया, और वो फिल्म है देवदास. देवदास अब तक 4 या 5 बार बन चुकी है. पहली बार KL सहगल ने इसमें काम किया था. यह फिल्म बड़ी चर्चा में रही, बहुत हिट हुई थी, इसके गाने भी बहुत हिट हुए थे. उसके बाद विमल रॉय ने यह फिल्म बनाई, और इसमें काम किया ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार साहब ने, और ये फिल्म जबरदस्त हिट रही. लेकिन एक्टिंग का जो इतना बड़ा कद कायम कर लिया था दिलीप साहब ने, उस कद को छूने की हर एक्टर की चाह होती है, और ऐसी ही चाह लेकर शाहरुख खान भी कूद पड़े एक और देवदास में, जिसे संजय लीला भंसाली बना रहे थे, जो लार्जर देन लाइफ फिल्म बनाने के लिए बहुत ही मशहूर है. बेहतरीन फिल्में बनाते हैं, बहुत ही कलरफुल, बहुत ही म्यूजिकल हिट, और ऐसी फिल्म जिसे देखने पर बड़ा मजा आता है, बहुत अच्छी लगती है फिल्म देखने में, उसके सेट्स, उसके सीन्स भी आपको याद रह जाते हैं. ये कमाल है उनकी फिल्मों का. तो देवदास जब वो बना रहे थे, तो उन्होंने शाहरुख खान को अप्रोच किया, और शाहरुख खान ने ये फिल्म एक्सेप्ट कर ली. यू वोंट बिलीव कि शाहरुख खान कभी कभी ऐसा भी करते थे कि सेट लगा हुआ है, लेकिन क्योंकि अब वो देवदास के मूड में नहीं आ पा रहे. अब क्योंकि मूड में नहीं आ पाएंगे तो डायलॉग कैसे बोलेंगे, वो उस कैरेक्टर को कैसे निभाएंगे, उसे कैसे जी पाएंगे. तो कई बार ऐसा हुआ, और जिसकी वजह से इस फिल्म का बजट भी बढ़ गया, कि सेट लगा हुआ है, सारी तैयारी हो गई है, बाकी के सारे लोगों को कॉल कर लिया गया, लेकिन शाहरुख खान ने कहा कि यार नहीं, मुझे आज मजा नहीं आ रहा. और उसका नतीजा ये होता था कि 15-15 लाख रुपए की चपत लग जाती थी एक रोज में, क्योंकि सारी तैयारी हो गई, बस एक्टर जो हीरो है वो तैयार नहीं है. उसने कहा कि आज नहीं, कल करेंगे. और शायद इस आज नहीं कल में थोड़ा बजट तो बढ़ गया, लेकिन परफेक्शन के चलते ये फिल्म इतनी बेहतरीन बनी कि शाहरुख खान ने दिखा दिया कि वो भी किसी से कम नहीं है. बहुत अलग तरह का उन्होंने काम किया, और ऐसा काम किया जिसे मैं उनकी बेस्ट 5 फिल्मों में से मानता हूं. और भी इस फिल्म में चंद्रमुखी थी, माधुरी दीक्षित, कमाल का काम किया उन्होंने. हम पे ये किसने हरा रंग डाला, और उनको कैसे भूल सकते हैं, पारो, जिसके प्यार में देवदास देवदास बने थे. हाँ, मतलब अब क्या करें, जो प्यार में चोट खाया हुआ होता है ना, उसे देवदास ही कह दिया जाता है. बहुत कमाल की ये फिल्म थी. और इस फिल्म के म्यूजिक की अगर मैं बात करूं, तो किसी एक गाने को चुनना तो बड़ा भारी काम हो जाएगा, बड़ा मुश्किल है. चाहे वो सिलसिला ये चाहत का हो, जिसमें पारो देवदास के नाम का दिया जलाकर अपनी सखियों के साथ उस दिए को बचाती है तेज हवा से, या फिर जय की दादा वाला गाना, छलक छलक देखो छलक छलक जाए, मतलब एक से बढ़कर एक गाने थे. और इस फिल्म का म्यूजिक दिया था स्माइल दरबार ने. हालांकि स्माइल दरबार अचानक गायब हो गए, लेकिन उन्होंने कुछ 2-3-4 फिल्मों में जो भी म्यूजिक दिया, वो बहुत कमाल का म्यूजिक था. हम दिल दे चुके सनम, उसे कैसे भूल सकते हैं आप. डायरेक्शन तो कमाल का था ही, संजय लीला भंसाली का. और इसमें कॉस्ट्यूम्स और सेट्स और खास तौर से कैमरा एंगल्स, उनकी तारीफ के बगैर इस फिल्म का जिक्र करना थोड़ा सा अधूरा होगा. बहुत ही कमाल के थे. ये फिल्म देखने वाली फिल्म है, तो एक काम करता हूँ, रेडियो पर मैं आपको दिखा तो नहीं सकता हूँ, गाने सुनवा देता हूँ इसके, क्या कहते हैं आप. चलिए इस फिल्म से और उस दौर के कुछ और गानों से इस खूबसूरत सफर को आगे बढ़ाते हैं. आप सुनते रहेगा यादों का कारवां विद समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर.

ये जो जिंदगी है ना जिंदगी, ये साइन वेव की तरह एक बार ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, बस ऐसी अप्स एंड डाउन से ये जिंदगी बनी है भाई। अगर दिन है तो रात है, खुशी है जीवन है तो मृत्यु है, ऐसे ही कभी खुशी है तो कभी गम है। यही वो फिल्म है जिसका हम जिक्र करने वाले हैं। वेलकम बैक, मेरा नाम है समर। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं यादों का कारवां। कभी खुशी कभी गम, एक फैमिली ड्रामा, एक फैमिली की कहानी। ये स्टोरी है रिलेशनशिप्स की, बाप बेटे की कहानी, दो भाइयों की कहानी। कहानी में ट्विस्ट है, रोमांस है, प्यार है, रोना धोना है, नफरत है, खुशी है या गम है, और देश प्रेम भी तो है। वंदे मातरम और सारे जहां से अच्छा एक ही गाने को मिलाकर एक बेहद खूबसूरत गाना बनाया गया, बड़ा अच्छा लगता है वो गाना। और इस फिल्म के दूसरे गानों की बात की जाए तो हर एक गाना डिफरेंट इमोशन के साथ एक्सप्रेस किया गया है। कभी खुशी कभी गम जो टाइटल ट्रैक है वो फैमिली के इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। सूरज हुआ मध्यम, ओ माय गॉड, आई थिंक द मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग्स एवर इज सूरज हुआ मध्यम। मुझे ऐसा लगता है, बहुत सारे होंगे लेकिन अगर मैं अपनी लिस्ट बनाऊं तो शायद सूरज हुआ मध्यम नंबर वन है, बहुत अच्छा। और बोले चूड़िया बोले कंगना, इसके बगैर कौन सा फैमिली फंक्शन पूरा हुआ है आज तक बताइए, नहीं होता। चाहे शादी ब्याह हो या कोई ऐसी ही मांगलिक कार्य हो, ये गाना और इस पर डांस होता ही होता है। फिल्म की कहानी और म्यूजिक कमाल का है, फिल्म का पिक्चराइजेशन बहुत ही कमाल का है। फिल्म को इंडिया के अलावा यूके में भी पिक्चराइज किया गया है। और इस फिल्म में पहली बार दीवाना है देखो जो गाना था उसे ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में शूट किया गया, क्योंकि ये जो वेन्यू थी इसे बहुत ही मुश्किल था सिक्योर करना, और ये ऋतिक रोशन के डांसिंग के बगैर, उनकी एबिलिटीज के बगैर नहीं हो पाता। उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी टेक्स दिए और ये गाना कम्प्लीट हो गया। इस फिल्म से जुड़ी बहुत सारी बातें हैं जो शायद आपको नहीं पता हूं। मैं आपको बताऊं कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन साहब की मां का जो रोल था वो पहले वहीदा रहमान को दिया गया था और उन पर वो गाना पिक्चराइज भी कर लिया गया था, कभी खुशी कभी गम जो टाइटल ट्रैक है, लेकिन किसी वजह से उन्हें ये फिल्म ड्रॉप करनी पड़ी और फिर उनकी जगह सुलोचना जी ने काम किया। और भी कई बातें हैं इस फिल्म से जुड़ी हुई, जैसे कि रेनिंग मैन का टाइटल ट्रैक यूज किया गया था जब पू बोले तो करीना कपूर को दिखाया जाता है, उनका इंट्रोडक्शन होता है इस फिल्म में, और इसके लिए करण जौहर को स्यू भी कर दिया गया था यूके की कोर्ट में। तो इतनी सारी कहानियां इस फिल्म से जुड़ी हुई हैं, तो मैं सोच रहा हूं कि अब इस फिल्म की कहानी के बारे में क्या बात करूं आपसे। कुछ नगमे सुन लेते हैं, उसके बाद इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। स्टे कनेक्टेड।

छुप छुप कर एक लड़की की तस्वीरें खींचकर अपनी कंपनी की मैगजीन में वो छाप देते हैं। और फिर उर्मिला मातोंडकर जो उनके लिए मॉडलिंग करती हैं, वो फरदीन के प्यार में पड़ जाती हैं। ये कहानी थी इस फिल्म की। फिल्म का नाम था प्यार तूने क्या किया। ये फिल्म अपने म्यूजिक की वजह से और उर्मिला की एक्टिंग की वजह से बहुत चर्चा में रही थी। फिल्म का म्यूजिक दिया था संदीप चोटा ने और बहुत ही कमाल का म्यूजिक था। फिल्म को डायरेक्ट किया था रजत मुखर्जी ने। फिल्म के प्रोड्यूसर थे राम गोपाल वर्मा, जिन्होंने पहली बार उर्मिला को इतना बड़ा ब्रेक दिया था फिल्म रंगीला में। और इस फिल्म के लिए उर्मिला मातोंडकर को बॉलीवुड की मोस्ट सेंसेशनल एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। फिलहाल इस फिल्म का कमबख्त इश्क सुन लिया जाए क्या? मुझे बहुत पसंद है आशा भोंसले और सुखेंदर की आवाज में। क्या कहते हैं आप? आइए गाना एंजॉय करते हैं। और आपका और मेरा साथ कुछ देर का और है। यादों के इस कारवां में अगली बात किस फिल्म की होने वाली है, उसके लिए आपको सुनते रहना होगा रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव। मैं हूं समर, बस मैं यूं गया और यूं आया।

0: सिंगापुर बोर्ड हो गेम खेलनी है चैलेंज एक्सेप्ट करोगे एक्साइटेड
1: मस्टी मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: अच्छा सुनो जरा ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा
3: हाँ जी जी
2: आधा केजी मसूर दाल
3: जी जी
2: काजू किशमिश ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं
3: जी जी
2: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो
3: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर
2: क्या
3: जी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर जस्ट लॉग ऑन टू जीजी मार्ट ऑनलाइन .com ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप
2: वाजी क्या बात जी
3: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर

कहा था ना यूं गया और यूं आया। लीजिए हाजिर है समर रेडियो मसी 24/7 लाइव और लेकर यादों का कारवां। इससे पहले कि मैं इजाजत लूं आपसे कि बस अब फिर मिलेंगे, एक और खूबसूरत गाने की बात कर लेता हूं, उससे जुड़ी स्टोरी के बारे में गुफ्तगू कर लेते हैं। एक राज की बात बता देता हूं आपको मैं। ये बात है फिल्म राज की, जो कि 2002 में रिलीज हुई थी और इसके एक्टर्स थे डीनू मोरिया और बिपाशा बासु। ओए होए बिप्स। बिप्स को ये फिल्म लकीली मिली थी क्योंकि पहले ये फिल्म लीजा रे को ऑफर की गई थी। नदीम श्रवण का म्यूजिक और फिल्म की स्टोरी है काफी इंटरेस्टिंग। एक हॉरर फिल्म है ये, जिसमें एक लव स्टोरी भी है, ड्रामा है, खूबसूरत गाने हैं, डायरेक्टर हैं इसके विक्रम भट्ट। लेकिन अब जो मैं गाना आपको सुनाने वाला हूँ वो मुझे बहुत पसंद है कि हर गाना इस फिल्म का बहुत ही कमाल का है। आपके प्यार में हम संवरने लगे हूँ, अलका जी की आवाज में, या फिर जो भी कस्में खाई थी उदित नारायण की आवाज में, या फिर ये शहर है अमन का यहाँ पे सब शांति शांति है। लेकिन मुझे जो गाना सबसे ज्यादा पसंद है ना वो है आपके प्यार में हम संवरने लगे। क्या कहते हैं, कौन सा सुनाऊं? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100, ये वाला सुन लीजिए, ये भी अच्छा है। चलिए इन गानों के साथ दीजिए समर को इजाजत, एक और कारवां के साथ लौटूंगा मैं। ये यादों का कारवां रेडियो मसी 24/7 लाइव, और अब तो हम नए मिलेनियम में आ गए हैं। इनमें से कुछ फिल्में तो आप लोगों ने भी देखी होंगी, जो यंगस्टर्स मुझे सुन रहे हैं। तो चलिए इन फिल्मों के साथ जुड़ी यादों को ताजा करेंगे, एक बार फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, नमस्कार, फिर मिलेंगे।

0: फ्लाइट टिकट खरीदे, दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ। जोश में
2: रहो। रात अकेली है
3: तो क्या हम तो

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10 का 20।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा। मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musty Top 20, only on Radio Musty 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.
2: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके

0: बात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गेम जय सिंगापुर, सारू जय।
0: नो टॉकिंग अलाउड, सिर्फ म्यूजिक बोलेगा। बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे,
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आप

ट्रैक से फास्ट ट्रैक लाने में निकाल देता है, पर 2.5 घंटे में मेरी किस्मत ऐसे स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक पर आ जाएगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। सजा मजा बन जाएगी।

0: पेपो, 80-90 पूरे 100, रात के बज गए 1:45, जो होता है होने दो।
1: जादू है, नशा है और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना
2: रात

वेलकम है जी, अपना ही गराज है। ट्रक्का वाला गीत है जी।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: रात अकेली है
2: तो क्या हम तो

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: For show timings, check out the Radio Masti app now.

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
1: You know what? कुछ जो दुख होते हैं ना, उनकी आदत लग जाती है और हम उनकी कंप्लेन करना छोड़ देते हैं। उनमें से पता है वो कौन सा दुख है जो सिंगापुर के सबसे टॉप पर आता है? वो है कि यहाँ बहुत ह्यूमिडिटी है, बहुत गर्मी है, मन नहीं लगता, ऐसा लगता है कि टैनिंग ही टैनिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ऐसी कंप्लेंट्स तो यार यहाँ पे हर कोई करता रहता है, पर अब हमने इसके संग रहना सीख लिया है। जब भी कोई ऐसा बोलता है ना, तो वो या तो सिंगापुर में रिसेंटली शिफ्ट हुआ है, या फिर कोई एज अ टूरिस्ट बस घूमने आया है और उसको पता नहीं था सिंगापुर का वेदर। आरजे नूपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर वंस अगेन आपसे मुलाकात करने के लिए आ चुकी है। एंड द पॉइंट इज कि बहुत सारी बातें, बहुत सारी इनसाइट्स कर रही हैं आपका इंतजार। सो डोंट गो एनीवेयर मेरी जान, आती हूं मैं जस्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: सिंगापुर बोर्ड हो, गेम खेलनी है, चैलेंज एक्सेप्ट करोगे?
4: एक्साइटेड
5: मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
6: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
7: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टकाटक जोश में
8: रहो। You know what? जब भी मैं कोई ऐसी फूड डिश खाती हो ना जो मैं बचपन में खाती थी और वो मैंने अब खा ली, तो मेरे नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स मेरी आंखों के सामने आ जाते हैं। सो हेलो हाय, मैं आज इन पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। नॉस्टैल्जिक से मुझे याद आया कि हम मूवीज देखकर भी नॉस्टैल्जिक फील कर जाते हैं और सीनियर जो एक्टर्स हैं ना वो भी नॉस्टैल्जिक फील करते हैं जब अपने आप को वो वहां पर देखते हैं। एंड जो अपकमिंग मूवी है शाहरुख खान की जिसका नाम है किंग, उसमें जैकी श्रॉफ उनके साथ नजर आने वाले हैं, तो उनके लिए बड़ा नॉस्टैल्जिक मोमेंट है। पूछिए क्यों? क्योंकि 2002 में देवदास मूवी में शाहरुख खान एंड जैकी श्रॉफ एक साथ नजर आए थे और उससे भी पहले 1993 में एक मूवी आई थी किंग जंगल, है ना, उसमें भी जैकी और शाहरुख खान एक साथ थे और जैकी श्रॉफ ने बताया कि शाहरुख खान जो है ना वो उनके छोटे भाई का किरदार निभा रहे थे। लेकिन शाहरुख खान तब बहुत ही शांत स्वभाव वाले शख्स हुआ करते थे, सेट्स पर कोने में बैठे रहते थे, किसी से बात नहीं करते थे और बस अपनी एक्टिंग पे ध्यान देते थे। तो 1993 के बाद ये लोग इतना क्लोजली देवदास मूवी में काम कर पाए, फिर हैप्पी न्यू ईयर मूवी में कर पाए और अब किंग मूवी में एक साथ दिखाई देने वाले हैं। तो बिल्कुल बहुत लंबी स्टोरीज जा रही है इन एक्टर्स की आज इन पर मस्ती मॉर्निंग शो पर।

0: on Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style anywhere anytime.
1: हवा के साथ साथ
2: अरे रे रे
1: घटा के संग संग
2: संभलना
1: हवा के

0: सुन टका टक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
1: सुबह सुबह उठने के साथ रात तक आपकी जो भूलने की बीमारी चलती आ रही है ना, इसे जरा बादाम बादाम खाकर कम करो। और प्रीमियम अच्छी क्वालिटी वाले आमंड्स जब तक नहीं खाओगे तब तक काम नहीं चलने वाला। सो हेलो, हाय, मैं आज जेनिफर मसी मॉर्निंग शो पर आपके साथ। अच्छा, घर बैठे बैठे आपको प्रीमियम प्रोडक्ट चाहिए एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट चाहिए तो आप पहुंच सकते हैं ggmartonline.com। इनकी खुद की भी रेंज है, कृषिवल ड्राई फ्रूट्स, हाँ जी, जिसमें आपको प्रीमियम कैशियूज से लेकर पम्पकिन सीड से लेकर हेजनट से लेकर क्या कुछ नहीं मिलेगा। एंड यू नो व्हाट, अगर आपको खाने के बाद या फिर कभी कभी मीठा खाने का मन करता है ना, तो गुलाब और नेचुरल शुगर से बना गुलकंद भी आप इनका जो एक्सक्लूसिव है ना वो ले सकते हैं। तो डेफिनेटली घर बैठे बैठे हर तरह की ऑर्गेनिक ग्रोसरी से लेकर फ्रूट से लेकर वेजिटेबल्स से लेकर ए टू जेड जो भी मसाला है ना, सब कुछ आपको मिलेगा ggmartonline.com पर। डेफिनेटली डू ट्राई एंड थैंक मी लेटर। आरजे नूपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर।

0: hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा,
3: हाँ जी जी,
2: आधा केजी मसूर दाल,
3: जी जी,
2: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
3: जी जी,
2: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
3: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
2: क्या जी?
3: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
2: वाजी, क्या बात जी।
3: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
1: नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर,
2: नुपुर,
0: यू नो वॉट, मुझे कई बार सेलिब्रिटीज पे डाउट होता है कि अरे ये डाइटिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये कहीं हमें पागल तो नहीं बना रहे। मतलब इनके पास या तो चॉइस है खुद डाइट करने की, या फिर ये चॉइस है कि ये हम सबको मोटा करके खुद पतले नजर आए, है ना? मतलब खुद ज्यादा फिट नजर आए। मोटे पतले की तो बात हम साइड में कर देते हैं, लेकिन खुद ज्यादा शेप अप नजर आए। हाँ, एनीवेज मैं आज से नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। और डाइट कॉन्शियस लोग भी यार आम रस यानी मैंगो शेक पीना पसंद करते हैं, बस कोई एक्स्ट्रा शुगर ना डालकर, कुछ उसमें प्रोटीन इनटेक जो पाउडर्स आते हैं वो डाल दिया, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, तो भी वो एक हेल्दी सोर्स ऑफ प्रोटीन बन सकता है। सो रिसेंटली करीना कपूर खान ने इन चीजों को एक्सप्रेस किया है कि खाना खाने के बाद वो आम रस पीने बैठ गई। आय हाय आय हाय। तो ये सेलिब्रिटीज कई बार हमें मोटिवेट करते हैं कि सुनो, अगर आप थोड़ा सा अभी अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे हो तो आप अपने ये वाले जो सुख है ना, हाँ, इनको मत पीछे छोड़ो। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर।

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: For show timings, check out the Radio Masti app now.